सुनो, पार्टी हार्ड करो लेकिन ड्रिंक करके ड्राइव मत करना। कैब बुलाओ, दोस्त को बुलाओ, हेडलाइंस मत बनाओ यार। आज की रात सेफ्टी इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल पिकअप।

0: Commentary will be right back after these messages.
1: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rambana. Burka, burka. La vispa, la burka. Mirchi, burka.
2: हेलो,
3: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई।
2: हाँ जी
3: यार, कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
2: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
3: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
2: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
3: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिगाड़ दिए यार, सारे दिमाग।
2: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
3: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
2: सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
3: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
2: अरे शर्म की क्या बात है सर,
3: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
2: किसी का
3: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
2: लेंस कौन सा लगाया नहीं?
3: क्या कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
2: गायब
3: नहीं दीदी, मैं कल को
2: फोटो खींचे।
3: अरे लेंस ऐसे
2: पूरे
3: कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है अंदर से, सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
2: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है।
3: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
2: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
3: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे
2: हैं। सर क्या बात, चुन के बनाया है?
3: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहु उसका, चलो छोड़ो मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
2: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
3: गड़बड़
2: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
3: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
2: दिखाइए
3: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
2: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए,
3: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है,
2: कहाँ होता है बताइए?
4: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो में।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
7: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
9: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे।
10: I enjoy using inefficient and complex software, मामा।
11: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
7: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite, जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ privacy और protection का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
12: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
13: Listener MA, back to back gana sunega.
14: Back to back gana sunega.
13: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
15: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go. We-

जाता है कैसे प्यार ये किसको पता। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका आपके साथ, डांस फ्लोर पे केमिस्ट्री फ्री मिल जाएगी आपको।

0: बच्चा आज का आसन है यस बॉस आसन। इसमें आपको बॉस के हर काम को हाँ करने के लिए अपनी गर्दन और मुंह ऊपर नीचे करनी होती है। ट्राई करो, ऊपर नीचे, वेरी गुड। इस यस बॉस आसन से आपकी चापलूसी करने की क्षमता बनी रहती है, और ये आसन करने से मसल ग्रोथ तो अच्छी होती ही है और करियर ग्रोथ भी टनाटन हो जाती है।
1: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
2: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
3: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
4: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
6: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद कल्याण ज्वेलर्स। गेट अप टू 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इज़लन, न्यू जर्सी। कंडीशंस अप्लाई।
7: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्केटवे, आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिरजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 732-357-8200। जय गुरुदेव।
8: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
9: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
8: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
10: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
8: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
11: एक ही होता है।
8: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
12: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।

अभी टाइम है सनी सनी करने का खुद को. यू हैव टू राइज अप टू द ओकेशन. डजंट फील इम्पॉसिबल व्हेन डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका ऑन क्लब मिर्ची. Magic.

0: Energy will be right back after these messages.
1: Energy.
2: Iskabana, uskabana, sakabana. Gambana. Murga, murga. La vieja la murga.
3: हेलो
4: हेलो सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या मतबाशा बना रखा है यार, आपकी कंपनी आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे?
3: क्या हो गया
4: सर? मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है? मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया, क्या कर दिया आपने?
3: क्या हुआ, क्या है
4: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
3: कब दिया था आपने?
4: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
3: क्या प्रॉब्लम, क्या है?
4: चंद्रो फोन लेके आ,
3: डिस्प्ले आ रहा है।
4: डिस्प्ले आ रहा है, डिस्प्ले से क्या होता है यार?
3: फोन आ रहे हैं और ओके।
4: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
3: बेल बज रही है।
4: अरे बेल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है, मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं है आज तक। इधर रख, ये क्या है यार ये?
3: अरे आपने लिया कहाँ से था?
4: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
3: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप?
4: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
3: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
4: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक
3: तो
4: नहीं होते,
3: थोड़ी ना
4: तो मैंने आपने नहीं बताया आपको, पहले पहले पहले बोलना चाहिए था यार आपको।
3: गुब्बारे वाला फोन हमें बता,
4: गुब्बारे वाला फोन यार, बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते, कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे हैं सर्विस सेंटर आप। बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते, कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे हैं सर्विस सेंटर आपको, लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
3: तो आप

0: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो।

0: परेशानी। जिम मेंबरशिप ले ली है, जा नहीं पा रहे। पुराने कपड़ों में आ नहीं पा रहे। एक काम करें, उसके बाद में एक और काम करें। वो दोनों खत्म हो जाए तो एक काम करें, फिर से एक काम करें, खूब सारे काम करें, 10 काम करें। करत करत अभ्यास ते शरीर से जाए सुजान। तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
1: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन, we are gonna go, we are gonna...

0: Energy will be right back after these messages.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। It's 9 o'clock. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price. It's 9:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
2: Listener mein back to back gana sunega. Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
3: Ladies and gentlemen, we are gonna go. We are gonna go. We are gonna go.
4: On a ride.

0: हेलो,
1: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
0: हाँ जी।
1: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
0: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
1: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
0: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
1: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिगाड़ दिए यार, सारे दिमाग।
0: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
1: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
0: मैंने देखी खुद अपने हाथ से एल्बम। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर बेहतरीन, आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
1: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
0: अरे शर्म की क्या बात है सर,
1: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
0: किसी का
1: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
0: लेंस लगाया नहीं।
1: क्या कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
0: गाय
1: नहीं दीदी, मैं कल को
0: फोटो खींचे।
1: अरे लेंस ऐसे
0: पूरे कपड़े
1: कौन से? मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है अंदर से, सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
0: सर शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
1: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
0: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
1: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
0: सर क्या बात, सुन के बनाया है?
1: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
0: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
1: गड़बड़
0: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
1: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
0: दिखाइए
1: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
0: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए,
1: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है,
0: कहाँ होता है बताइए।
2: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
5: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
4: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
6: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
4: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
7: एक ही होता है।
4: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट,
8: लेडीज एंड जेंटलमैन।

0: नहीं हो रहे हैं क्योंकि क्रश को भेजे हुए मैसेजेस के टिक नीले नहीं हो रहे हैं। इसका उपचार है, गहरी सांस लें, अपने हाथों को ऊपर उठाएं और अपने हाथों के साथ साथ अपने एक्सपेक्टेशंस को भी नीचे ले आएं, क्योंकि तुम्हारी क्रश तुम्हारी लीग से बाहर है ब्रो। औकात में रहो, सुखी रहो। तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
1: सेलिब्रेट योगा विथ अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट
2: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go.

0: पीपल क्लब मिर्ची पे डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंते का एक साथ, और आज रात शाइन करने का लाइसेंस सबको मिला हुआ है इफ यू आर लिसनिंग टू क्लब मिर्ची, सो वी आर ऑल बोर्न टू शाइन।
1: तो हम चाहते रखना जिन्हें भंगड़ा पाना पंजाबी आ गया कुचेला।

वीकेंड ऑफिशियली ऑन हो चुका है. दिमाग को एयरप्लेन मोड पे डालो, स्पीकर्स को फुल वॉल्यूम पे, और जो पेंडिंग स्ट्रेस है उसको कल पे डाल दो यार. ये है क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका. जहाँ फ्रेंड सर्कल हो या स्पेशल सर्कल, टुनाइट नोबडी इज सिटिंग. डांस फ्लोर पे बस एक रूल है, ऑकवर्ड मत हो, बस मूव करो. और अगर स्टेप नहीं आता, कॉन्फिडेंस से करो यार, लोग बोलेंगे ट्रेंड चल रहा है. डांस बस संत.

0: Archie will be right back after these messages.
1: Mirchi.
2: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Murga, murga. La virbala murga. Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Hi. Ye पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
5: हेलो।
3: हेलो,
5: कौन बोल रही हैं?
3: आप कौन बोल रही हैं?
5: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
3: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
5: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
3: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
5: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
3: ये तो वहाँ से मेरे पास,
5: अरे यार
3: जैसे आपके पास आया कि भी अगर आप खाली बैठे,
5: हो सकता है, हो सकता है, हो सकता
4: है। आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
5: हेलो।
3: हेलो,
5: कौन बोल रहे हैं? अरे भाई यार, मैं लड़की के चक्कर में, यार कहां से आ रहे हो यार बीच में, मैं मेरी लाइन,
3: भाई ये नंबर क्या है, तू बता तू क्यों लाइन में आ रहा है?
5: मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार, तू लाइन में आ रहा है, मैं लाइन में आ रहा हूँ। अच्छा, एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे। हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरा कुछ जा रहा
3: है, तो
5: यार बदतमीजी बदतमीजी मत कर,
3: मुझे बात करने दे, पहले दो
5: मिनट रुक जा। तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
4: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ू कू। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
3: तो वो आ रहा है, मुझे लग रहा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे भाई मालूम था ये
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
9: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो
10: ऑन अ राइड।

0: पीपल क्लब मिर्ची पे डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंटे का एक साथ और आज रात शाइन करने का लाइसेंस सबको मिला हुआ है इफ यू लिसनिंग टू क्लब मिर्ची सो वी आर ऑल बॉर्न टू शाइन
1: तो तम चाके रखना जिन्हें भंगड़ा पाना पंजाबी आ गया तो चिल्ला

0: बच्चा आज का आसन है यस बॉस आसन। इसमें आपको बॉस के हर काम को हाँ करने के लिए अपनी गर्दन और मुंह ऊपर नीचे करनी होती है। ट्राई करो, ऊपर नीचे, वेरी गुड। इस यस बॉस आसन से आपकी चापलूसी करने की क्षमता बनी रहती है और ये आसन करने से मसल ग्रोथ तो अच्छी होती ही है और करियर ग्रोथ भी टनाटन हो जाती है।
1: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
2: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट,
3: लेडीज एंड जेंटलमैन।

0: Energy will be right back after these messages.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर

और सुनो, पार्टी हार्ड करो लेकिन ड्रिंक करके ड्राइव मत करना। कैब बुलाओ, दोस्त को बुलाओ, हेडलाइंस मत बनाओ यार। आज की रात सेफ्टी इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल पिकअप।

0: Strategy will be right back after these messages.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो
3: ऑन अ राइड,
5: क्लब मिर्ची।

हो या कंफ्यूज्ड, बीट सबको इक्वली ट्रीट करती है। गाने का नाम है एक जैसा हाल। चलो लेट्स गो।

हो जाता है कैसे प्यार ये किसको पता। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योनतिका आपके साथ, डांस फ्लोर पे केमिस्ट्री फ्री मिल जाएगी आपको।

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली goes down the ground.
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Energy will be right back after these messages.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा.
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो.

0: मेरा आप करो मुर्गा बन गए।
1: प्रीति ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं एक बार दिल्ली को सुना दूं?
2: नहीं
1: से सॉरी
2: सॉरी ना मैं सॉरी।
1: प्यार से बोल दीजिए कोकड़ो को
2: कुकड़ू गो।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: पटाक। लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोना गो वी आर गोना गो वी आर गोना गो ऑन अ राइड
3: क्लब मिर्ची।

0: बच्चा ये आसन है खर्चा आसन। इसमें बीवी की हर मांग पूरी करने के लिए अपने हाथ और जेब में सामंजस्य बैठाना है। पहले दाया हाथ उठाओ और उसे जेब में डालो, एटीएम कार्ड बाहर निकालो। इस क्रिया को 2-3 बार दोहराओ। ये करने से आपको कमरे के बाहर सोफे पे नहीं लेटना पड़ेगा और खाने में ताने भी नहीं मिलेंगे।
1: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई कर।
2: सेलिब्रेट योगा विथ अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
3: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
4: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

0: Archie will be right back after these messages.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Ladies and gentlemen, we are gonna go!

0: फिर है बाहे मुझको पहचान लो
1: वीकेंड पे कॉन्फिडेंस का लेवल इलीगल हो जाता है। वेलकम बैक पार्टी पीपल, मैं हूँ डॉन डी।

0: Strategy will be right back after these messages.
1: Mirchi.
2: Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Murga, murga. La virbala murga.
1: Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Hi. ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
5: हेलो।
3: हेलो,
5: कौन बोल रही हैं?
3: आप कौन बोल रही हैं?
5: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
3: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
5: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
3: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
5: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
3: ये तो वहाँ से मेरे पास,
5: अरे यार
3: जैसे आपके पास आया कि अगर आप खाली बैठे
5: हो सकता है, हो सकता है।
4: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
5: हेलो।
3: हेलो,
5: कौन बोल रही? अरे भाई यार, मैं लड़की के चक्कर में यार, कहां से आ रहे हो यार बीच में? मैं मेरी लाइन,
3: भाई ये नंबर क्या है, तू बता, तू क्यों लाइन में आ रहा है?
5: मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार, तू लाइन में आ रहा है? लाइन में आ रहा हूँ तो एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे। हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरा कुछ जा रहा
3: है?
5: या बदतमीजी बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
4: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ू कू।
3: हेलो
5: सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
3: तो वो आ रहा जा रहा, मुझे लग रहा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे भाई मालूम था ये कुकुकू।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
6: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट
2: मिर्ची।
5: हेलो मिस्टर विपुल, मैं से बोल रहा हूँ, आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए, आपके मोबाइल का इनबॉक्स, तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे?
3: इनबॉक्स चाहिए, इनबॉक्स कैसा मतलब?
5: मैं आपको वही समझा रहा हूँ, एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है, तो सर्वर में जो डेटा होता है, अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना, तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा, अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे, तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ, आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ, ठीक है सर?
7: नहीं नहीं, बात तो सुनो भाई साहब।
5: हाँ बताइए।
7: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा, वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना?
5: नहीं, वो हम खींच लेंगे, आप उसकी फिक्र मत करिए।
7: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे?
5: मैं कुछ भी करूँ यार, आप ज्यादा बहस करते, क्योंकि एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं, आप मुझसे बहस कर रहे हैं।
7: बहस वाली बात नहीं है, मतलब मैं खुद मालूम तो करूँ ना, अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम से कम
5: बिल्कुल
7: मुझे
5: बिल्कुल से, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
7: जा कहाँ रहा है?
5: नहीं वो जा कहाँ रहा है, जा यहीं रहा है, आपकी कंपनी में जा रहा है, और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए, अब उसमें आपको टेंशन क्या है, हम आपके मैसेजेस रखेंगे, उसको पढ़ेंगे सही से।
7: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें, मैं ऐसे किस तरह से दे दूँ उसको?
5: वैसे आप बुरा मत मानना, आपके मना करने से मुझे लग रहा है कि आपने उसमें सारे नॉनवेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें।
7: यार क्या बात कर रहा
5: हूँ, नॉनवेज एसएमएस क्यों रखे हुए यार आपने उसमें? बेकार की बातें कर रहे हैं, आप कंपनी को जरूरत है? क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे? मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए, मेरी बात सुनिए।
7: चल
5: नहीं नहीं, आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे, मेरे हाथ में है, रुकिए रुकिए, सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है, उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी, आपके बर्तन, आपके कपड़े तक उतरवा सकती है
7: कंपनी, ये कर सकती है, वो कर सकती है, बिल्कुल कपड़े उतारना
5: क्या बात कर रहे हैं यार, मेरी बात सुनिए आप पूरी। हेलो
8: हेलो
5: हेलो भाई साहब, आपने फोन काट दिया यार, इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं, आप फोन काट रहे हैं यार। यार बात सुनिए आप मेरी, मैं आपसे सिर्फ एक बात, विपुल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए, मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा, तुम रेडियो मिर्ची पे हो।
9: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आसन। इसमें आपको बॉस के हर काम को हाँ करने के लिए अपनी गर्दन और मुंह ऊपर नीचे करनी होती है। ट्राई करो, ऊपर नीचे, वेरी गुड। इस यस बॉस आसन से आपकी चापलूसी करने की क्षमता बनी रहती है, और ये आसन करने से मसल ग्रोथ तो अच्छी होती ही है और करियर ग्रोथ भी टनाटन हो जाती है।
1: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
2: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, we are gonna go.
4: Ride.

0: परेशानी। जिम मेंबरशिप ले ली है, जा नहीं पा रहे। पुराने कपड़ों में आ नहीं पा रहे। एक काम करें, उसके बाद में एक और काम करें। वो दोनों खत्म हो जाए तो एक काम करें, फिर से एक काम करें, खूब सारे काम करें, 10 काम करें। करत करत अभ्यास ते शरीर से जाए सुजान। तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
1: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: परेशानी, आपके हाथ पीले नहीं हो रहे हैं क्योंकि क्रश को भेजे हुए मैसेजेस के टिक नीले नहीं हो रहे हैं। इसका उपचार है, गहरी सांस लें, अपने हाथों को ऊपर उठाएं और अपने हाथों के साथ साथ अपने एक्सपेक्टेशंस को भी नीचे ले आएं, क्योंकि तुम्हारी क्रश तुम्हारी लीग से बाहर है ब्रो। औकात में रहो, सुखी रहो। तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
1: सेलिब्रेट योगा विथ अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: With Mirchi. Fresh Maal.
2: मस्ती स्वैग और जबरदस्त बीट्स हो तो बस एक ही शब्द निकलता है वल्ला
3: ओए लुक

इस गाने को आवाज दी है बयानी और हार्डी संधू ने, म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। कॉकटेल 2 से सुनते रहिए बल्ला, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

इस गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: आसन। इसमें आपको बॉस के हर काम को हाँ करने के लिए अपनी गर्दन और मुंह ऊपर नीचे करनी होती है। ट्राई करो, ऊपर नीचे, वेरी गुड। इस यस बॉस आसन से आपकी चापलूसी करने की क्षमता बनी रहती है, और ये आसन करने से मसल ग्रोथ तो अच्छी होती ही है और करियर ग्रोथ भी टनाटन हो जाती है।
1: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
2: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

आर के जूल्स मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: डोमिनेटिंग लोगों से परेशान होने के बजाय उन्हें सही तरीके से हैंडल कैसे करें, आइए इस बात को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, एक सवाल आया है, इन्होंने अपना नाम छोड़ा है मैच बेस मेकर, मेरे ख्याल से कोई काम का हैंडल होगा। वो लिखते हैं कि अगर हमारे आसपास हमेशा डोमिनेटिंग लोग हों जो हर बात में कंट्रोल करते हैं, दबाव बनाए रखते हैं या हमारी बात और भावनाओं को महत्व ना देते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ शांति और आत्मसम्मान बनाए रखते हुए कैसे रहना चाहिए?
4: डिफिकल्ट हो सकता है। देखो, अभी हम हमेशा कहते हैं चॉइसेस। अगर आप किसी डोमिनेंट व्यक्ति के साथ रहते एंड इफ इट्स गेटिंग वेरी टॉक्सिक फॉर यू और आपके पास ऑप्शन है लीव करने का, तो भले अगर आप कर सकते हैं। अगर वो वर्क प्लेस आती है और आपको लगता है सामने वाला गलत है, दबाता है, कंट्रोल करता है, अपनी पावर को मिसयूज करता है, तो आपको अगर उसमें से निकलना है, इट इज टेकिंग अ टोल ऑन यू, इट इज ओके, बट दैट इज नॉट ऑलवेज एन ऑप्शन। कभी कभी तो आप वर्क प्लेस में भी नहीं छोड़ सकते, कभी कभी तो वो फैमिली मेंबर भी हो सकता है।
3: जी बिल्कुल।
4: तो दूसरी चीज होती है कि अपने को इतना स्ट्रांग बनाना कि उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर ना पड़े।
3: जी।
4: कोई आपको कंट्रोल कर सकता है लेकिन फिर भी वो आपके माइंड को तो डोमिनेट नहीं कर सकता ना। बाहर आपको कुछ करने के लिए कह सकता है, आपको गलत लगता है, आप मना करेंगे, तो कंट्रोलिंग व्यक्ति रिजेक्ट करेगा।
3: सही बात है,
4: पोजीशन ऑफ अथॉरिटी पर है।
3: हाँ, बिल्कुल।
4: रिजेक्ट भी करेगा, आपसे कुछ प्रिविलेजेस भी ले लेगा।
3: बहुत बढ़िया।
4: लेकिन अगर आप अपने को इतना स्ट्रांग बनाते हैं कि उस रिजेक्शन का इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ता और आप किसी भी प्रिविलेजेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो आप राइट पर रह सकते हैं।
3: बहुत।
4: और राइट पर रह करके आपका उनका आपके ऊपर इन्फ्लुएंस में नहीं पड़ता। समवेयर आई फील इफ यू कैन लिव विद अ वेरी डिफिकल्ट पर्सन, यू ग्रो वेरी फास्ट।
3: अरे वाह, वेरी गुड। हाँ, ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है, क्योंकि आप एडजस्ट करना सीख लेते हैं, आप समझ जाते हैं कि इसको अवॉइड करना है या इसको ऐसे हैंडल करना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
4: डिपेंड करता है आपका नजरिया क्या है। कई लोग उसी चीज को चैलेंज समझते हैं, कई उसी को अपॉर्चुनिटी समझते हैं। आप अपॉर्चुनिटी समझेंगे और कहेंगे कि ये वही तो ट्रिगर कर सकते हैं जो मेरे अंदर है। वो कंट्रोलिंग है तो मैं शॉर्ट टेम्पर्ड होऊंगा। अगर सी दे कैन ओनली ट्रिगर व्हाट इज विद इन मी, वो तो नहीं ट्रिगर कर सकते जो मेरे अंदर है। तो अगर कोई डिफिकल्ट पर्सनालिटी है, वो हमारी वीकनेसेस को भी ट्रिगर करती है।
3: वेरी नाइस।
4: अगर मैं उसको अपॉर्चुनिटी समझूं एंड आई सी इट एज अ मिरर कि ये मेरे अंदर भी, तो मैं जल्दी जल्दी अपसेट हो जाता हूँ, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता
3: है,
4: मेरे अंदर बहुत वेस्ट चलता है, सो आई विल टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि मैं अपने को एम्पावर करूँ ना। कितनों को छोड़ेंगे?
3: बिल्कुल सही बात।
4: कितनों से किनारा करेंगे?
3: सही बात।
4: कितनों को बदलेंगे? इससे तो अपने को बदल रहे।
3: और मैच बेस मेकर जो इंस्टाग्राम का हैंडल, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर जिद है उनकी आंधियों की तरह चलने की, तो हमारी भी आदत है दिए की तरह चलने की। ये सोचें और आगे बढ़ें।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया। Only on Mirchi. It's hot.

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: आज की जेनरेशन को सक्सेस का असली मतलब कैसे समझाना चाहिए, आइए जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, मैं जिडू कृष्ण मूर्ति को पढ़ रहा था और उन्होंने कमाल की एक बात कही कल्चर के बारे में और कैसे हमारे एनवायरमेंट में जो होता है वो बहुत हमको इम्पैक्ट करता है। तो आज के जो 20-30 साल के जो जेनरेशन है, जो बच्चे हैं, जो आज जिंदगी संभाल रहे हैं, उनको सबसे बड़ा झूठ सक्सेस के बारे में क्या बेचा गया है आपके हिसाब से?
4: सक्सेस जो कई बार आजकल देखे जाते हैं वो एक्सटर्नल लेवल पर देखे जाते हैं। सक्सेस एक्चुअली क्या होती है? एक है फाइनेंशियल सक्सेस, जिसमें आपके मटेरियल कंफर्ट्स हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट सिर्फ वो ही सक्सेस नहीं होते। आपके पास सब प्रकार के मटेरियल कंफर्ट्स हैं पर आपकी रिलेशनशिप कोलैप्स हो रही है, लोग आपको दुआ नहीं देते, आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते, आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, और उससे भी बड़ी बात, आप लोनली फील करते हैं, आपको खुशी नहीं है, आप अंदर से कंटेंट नहीं है। तो सक्सेस, सफलता का मतलब होता है कि आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशली, सोशली,
3: ये आपने बहुत अच्छे से कमाल से एक बार पहले भी कहा था मुझे, धन मन जन, इस तरह से आपने कुछ समझाया था
4: ना, मन भी शांत हो, तन भी हमारा कंफर्टेबल हो, धन भी है और जन रिलेशनशिप्स, कई जगह पर रिलेशनशिप्स कोलैप्स हो रही है, उसका भी तो टोल होगा ना
3: जी।
4: तो सफल होना जरूरी है, लेकिन ये सारे पैरामीटर्स चेक करें। और मुझे सफलता शब्द ज्यादा पसंद है सक्सेस से ज्यादा हिंदी में, क्योंकि सफलता का मतलब होता है सफल करना। एक व्यक्ति जो सफल है, जो उसकी निशानी होगी कि जो कुछ उसके पास है, चाहे वो स्किल है, टैलेंट है, एक्सपर्टीज है, धन है, समय है, वो फिर उसको दान में लगा देता है कि जो मुझे मिला है वो हम शेयर कर रहे हैं। और दान एक ऐसी चीज है, आप जितना देंगे
3: उतना ही वापस मिलेगा, उससे ज्यादा ही मिलेगा। हम
4: कोई भी चीज बढ़ाने का तरीका है कि आप उसको देना शुरू करें। तो सफलता माना सफल करना। तो हमारा जो सफलता होता है अक्वायर करना, सब अक्वायर करते रहना, पर एक्चुअली सफलता है अक्वायर करना नहीं, शेयर करना। सो इफ यू सी दैट इन समबडी देन यू नो कि वो सफल है, वो सिक्योर होते हैं सफल लोग।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: सॉलिट्यूड और लोनलीनेस में क्या फर्क है और दोनों हमारी मेंटल हेल्थ को कैसे प्रभावित करते हैं, आइए समझे।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, तो ऐसा क्यों होता है कि क्योंकि सक्सेस के पैरामीटर्स हमने शायद धन से मापे हो, फाइनेंशियल सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो हम अंदर बहुत मिजरेबल होते हैं, हम बहुत खोखले से होते हैं, और बात हमको ना बहुत सालों बाद रियलाइज होती है, क्योंकि उस समय हम जब 20 30 40 साल के होते हैं हम काम में इतने मसरूफ होते हैं कि हम रियलाइज नहीं करते। और जब आपको अपने साथ बैठना पड़ता है, जब शायद काम थोड़ा कम हो गया होता है, रिलेशनशिप शायद आगे मूव ऑन हो चुके होते हैं, तब आप रियलाइज करते हैं यार मैं लोनली भी हूँ, सॉलिट्यूड हो चाहता था लेकिन लोनली हो गया। तो ये
4: दोनों में फर्क है, एकांत है, एक अकेलापन है।
3: तो ऐसा क्यों होता है कि ये बहुत बाद में समझ में आता है, और ये शायद स्पिरिचुअलिटी का लेसन हमें कोई पहले सिखाता ही नहीं।
4: से दो कारण होते हैं। एक जो कारण है कि जो सफलता आपने बाहर के प्राप्त करी उसका तरीका क्या था। कभी कभी आपने बाहर की सफलता गलत नहीं है, धन संपत्ति गलत नहीं, कईयों को लगता है धन माया है, धन माया नहीं है, लोभ माया है।
3: अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया।
4: आपने अगर उसके लिए कहीं चीट किया, किसी को दुख दिया, ग्रीड इज रॉन्ग। धन तो धन होना और एक कंफर्टेबल लाइफ होना, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपने वो कमाने में आप अनएथिकल रहे थे, कईयों को दुख पहुंचा, कईयों को चीट किया, आपके किसी कर्म से अगर किसी को दुख पहुंचा है तो वो जो एनर्जी है वो लौट करके आती है। इसलिए एक कारण ये भी हो सकता है कि आप बाहर से बहुत सफल हैं लेकिन तरीका अगर ठीक नहीं था तो वो अकेलापन खालीपन महसूस होता है। दूसरा जो कारण है कि आपने बाहर तो बहुत मेहनत करी लेकिन अंदर जो खुशी है वो मन की स्थिति है। आपके ख्यालात कैसे हैं? अगर आपने अपने ख्यालातों को खूबसूरत नहीं बनाया, बना आप बहुत सफल हैं और फिर भी आप किसी से तुलना कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, किसी को आगे बढ़ता हुआ देख करके आप उनके प्रति आपकी भावनाओं में शुद्धि नहीं है, आपकी सोच के अंदर ही पॉजिटिविटी नहीं है, तो बाहर से आप बहुत सफल हो सकते हैं, बिलियनर मिलियनर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा सोचना नहीं आता
3: तो खुश नहीं होंगे,
4: नहीं हो सकते अपने बारे में, दूसरे के बारे में, परिस्थिति को लेकर के अगर आप सोच अच्छा नहीं सकते तो आप कभी भी खुश नहीं हो सकते। तो एक, बाहर का धन कमाए लेकिन अंदर का धन, ज्ञान धन, वो ज्ञान धन की भी कमाई करना, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करना, वो आना चाहिए। और दूसरा, बाहर का भी जो धन कमाए उस धन में दुआ लगे होनी चाहिए सबके। घर में कोई ऐसा धन नहीं आना चाहिए क्योंकि धन से अन्न आता है, अन्न का प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है। अगर आपने ऐसा कोई धन कमाया जिसमें किसी की बद्दुआ है तो उसका प्रभाव सारे घर के ऊपर पड़ता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Morning, only on Mirchi. It's hot. Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: मुश्किल सिचुएशंस में अपना नजरिया पॉजिटिव और बैलेंस्ड कैसे रखें? आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, एक बार हम बात कर रहे थे तो आपने नजरिए के बारे में बात की थी और आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था जहाँ आपने ये पानी की बोतल ली थी और ऐसे बताया था कि देखो तुम्हारी तरफ से क्या दिख रहा है और मेरी तरफ से क्या दिख रहा है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, बोतल के समक्ष आपने इसको पेश किया था कि कई बार नज़रिया हमारा जो पोजीशन होता है उससे बनता है। हम कुछ और देख रहे होते हैं, सामने वाला कुछ और देख रहा होता है। तो उसमें एक सवाल आया है, तारा चौहान जी लिखती हैं कि समस्या तो यह है कि कोई अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहता और वो हमारी जगह आकर देखना नहीं चाहता, तो समस्या का समाधान कैसे होगा?
4: कोई मना, वो वेट कर रहे हैं कि दूसरा बदले।
3: जी,
4: वही हमने कहा था कि ये जो एक इंतजार है कि दूसरा बदले,
3: वो कभी नहीं
4: होगा, वो नहीं हो सकता।
3: जी,
4: जरूरी है हम उनको समझें। और कभी कभी अगर आप किसी का नजरिया नहीं भी देख सकते, हर बार ये पॉसिबल नहीं होता, ये तो एक एग्जाम्पल था, तो ट्रस्ट करें। ट्रस्ट करना जरूरी है कि अगर इस समय पर ये वो बात कह रहे हैं, कुछ उनका पर्सपेक्टिव होगा,
3: वो सही ही होगा।
4: सही ही होते हैं, हमारे और उनके संस्कार अलग होते हैं। हर बार उनके शूज में जाकर उनके नजरिए को नहीं देख सकते, कई बार ट्रस्ट करना पड़ता है। ट्रस्ट करना पड़ता है, मतलब कई बार उनको भी नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल, कोई बहुत जल्दी जल्दी डाउट करता है और वो ये कहेगा नहीं, सबको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, सबको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आप उनको समझाने की कोशिश करते हैं, ट्रस्ट अच्छी चीज है
3: जी।
4: पर वो नहीं कर पाता, आपको समझ में नहीं आता कि मेरे समझाने के बाद भी उनको ये बात समझ क्यों नहीं आती। देन यू हैव टू ट्रस्ट कि उनके पास्ट में कोई एक्सपीरियंस ऐसा हुआ होगा, कोई धोखा उनको मिला होगा, इस जन्म में या पिछले जन्म में होगा, इसलिए उनका बिलीफ सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रांग है। सो यू जस्ट ट्रस्टिंग द पर्सन कि अगर उनका ये बिलीफ है उसके पीछे कोई कारण होगा। हम ट्रस्ट नहीं करते, हम अपसेट हो जाते हैं।
3: हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं।
4: कि हमारे समझाने के बाद भी इनको समझ में क्यों नहीं आ रहा है। बिलीफ सिस्टम्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। वो एक बार समझाने से नहीं जाएंगे, एक बार समझाने से ट्रिगर करेंगे, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे अगर आपका रिश्ता अच्छा होगा, मे बी दे विल एक्सपेरिमेंट विद समथिंग दैट यू आर सेइंग।
3: ये तारा चौहान जी के सवाल से मुझे एक बहुत अच्छा कोटेशन याद आ गया, डॉक्टर वेन डायर या ड्वायर ऐसे बोल के, अमेरिकन सेल्फ हेल्प ऑथर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उन्होंने बात कही थी, व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स दैट यू लुक एट चेंज। वह खूबसूरत बात है लगी मुझे, और बिल्कुल आपके बॉटल वाले एग्जाम्पल से बहुत फिट बैठता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: It's hot.
1: This golden hour is brought to you by Tanishq. सुनहरी होगी ड्राइव जब तनिष्क गोल्ड ज्वेलरी से सुनहरी होगी हर वाइब.

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: टॉक्सिसिटी को सहना सही नहीं, लेकिन हर बार खुद को विक्टिम मान लेना भी ठीक नहीं है। इस बैलेंस को कैसे समझें? आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, एक बहुत कॉमन ट्रेंड बोल सकते हैं, हकीकत भी होगा ही, कि हमारी जो जनरेशन है ना, वो टॉक्सिसिटी को, चाहे वो टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट हो, बॉसेस हो, जो भी हो, उसके लिए एनवायरनमेंट को, मैनेजर्स को, दूसरों को ब्लेम करते हैं। और सही भी है, होता भी होगा, मैं इस बात से बिल्कुल ये नहीं कहता हूँ कि ये गलत है। सोसाइटी को भी ब्लेम करते हैं, जरूर होता होगा, लेकिन इस विक्टिम मेंटेलिटी में चलने से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कहीं ना कहीं हम अपने आप को देखना छोड़ देते हैं। शायद मैं भी करता ही होऊंगा कभी ना कभी। तो ऐसे लोगों से कौन सा वो हार्श ट्रूथ है जो उनको बताना बहुत जरूरी है, जिससे कहीं ना कहीं हम दूसरों की जगह खुद की तरफ उंगली करें?
4: हार्श ट्रूथ तो ये है कि आप कितना भी चाहें, आप दूसरे को नहीं बदल सकते। आप ब्लेम कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, ट्रोल कर सकते हैं, सारा दिन बैठ करके उनके बारे में नेगेटिव सोच सकते हैं, कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं, पर चेंज तो नहीं कर सकते ना। तो वो चीज़ आपको ही डिप्लीट कर रही है। अगर टॉक्सिक एनवायरनमेंट है भी, तो पहले तो अपने को प्रोटेक्ट करना चाहिए।
3: हाँ, बिल्कुल।
4: और अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्टेप्स लेने हैं, ये तो ऐसा है कि सड़क पे इतना ट्रैफिक क्यों है? इतना कैसे बढ़ गया? पहले तो इतना नहीं होता था। चलाएं तो कैसे चलाएं? अब आप कितना भी करें उससे कोई फायदा तो है नहीं।
3: रियलिटी
4: है, ट्रैफिक है और बढ़ रहा है। तो आप ये देखते हैं कि हम उसमें कैसे अपने को सेफ रखें। मुझे ए से बी डेस्टिनेशन पर जाना है, हम ये भी कर सकते हैं, ये कैसे चला रहा है, इसको लाइसेंस कैसे दिया, इसको। लेकिन हम वो भी करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार हमारा एम तो यही होता है ना कि मुझे सेफली पहुंचना है, मेरी गाड़ी पर डेंट नहीं लगना चाहिए, ऐसे ही मेरे मन पर भी डेंट नहीं लगना चाहिए। जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच करके मेरे मन पर डेंट लग रहा है, वो आपको डिप्लीट कर रहा है। अगर टॉक्सिक एनवायरनमेंट है और आप उसको छोड़ नहीं सकते, हम पहले भी ये बात कर चुके हैं, अगर छोड़ सकते हैं तो छोड़ दें,
3: अच्छी बात है। और नहीं छोड़
4: कोई जरूरी तो नहीं है कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट में ही सारा जीवन बिताना है। अगर आपके पास वो पावर है या पॉसिबिलिटी है, पावर भी नहीं, पॉसिबिलिटी है, कई बार वर्क एनवायरनमेंट टॉक्सिक होते हैं, आप छोड़ सकते हैं, फैमिली नहीं छोड़ सकते ना, क्या करेंगे? एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स ही हैं, झगड़ते रहते हैं, आर्ग्यू करते रहते हैं, वो अभी अडल्ट नहीं है, कहाँ जाएंगे छोड़ करके? तो फिर अपने को इतना स्ट्रांग बना लें कि आप उस नेगेटिव एनर्जी से अपने को प्रोटेक्ट कर सकें।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
1: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
0: Renew?
1: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
0: What better way to celebrate than with something timeless?
1: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islip, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
3: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
4: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
5: Oh no!
6: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब. इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
7: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
8: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी. हर ड्राइव बनेगी यादगार.
9: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है। तालेकर कृष्णानंद जी लिखते हैं कि व्हाई डू वी एग्जिस्ट, हमारा अस्तित्व क्यों है।
3: कभी कभी ये हम क्वेश्चन तब पूछते हैं जब थोड़ा सा स्ट्रगल भी कर रहे होते हैं।
2: परेशानियां ज्यादा होती तभी,
3: तब लगता है ये क्या है, जीवन ही क्यों बनाया, भगवान ने क्यों बनाया, सुख दुख क्यों बनाया। एक्चुअली पर्पस है लाइफ का टू लिव
2: जी।
3: आप एंजॉय करते हैं, आप एक्सपीरियंस करते हैं, आप कभी कभी डिफिकल्ट चैलेंजेस हो या उसमें भी आप कुछ सीखते हैं। सो द होल आइडिया इज टू ग्रो, टू लिव, टू एक्सपीरियंस, इसलिए हम एग्जिस्ट करते हैं।
2: वाह, क्या बात, बहुत खूबसूरत। वैसे एक स्विस साइकियाट्रिस्ट थे, कार्ल जंग नाम था उनका, और वो लिखते हैं कि वी आर द मेयर पर्पस ऑफ एग्जिस्टिंग इज प्राइमरली टू लाइट द लाइफ ऑफ एन इनर बींग। तो अगर हम खुद को हमेशा अंदर ऐसी एक्सपीरियंसेस देते रहें जिससे इनर पावर हमारी बढ़ती रहे और अंदर हम बहुत अपने जोत जलाते रहें, तो वो एकमात्र बहुत खूबसूरत तरीका है जीवन जीने का।
3: सी, रियलाइजेशन होना कि हम बीइंग है। हम भले डूइंग मोड में ज्यादा रहते हैं पर हम बीइंग है जिसने एक फिजिकल बॉडी ली है। और इसीलिए हमारी जो एग्जिस्टिंग का पर्पस है टू बी, टू बी पीसफुल, टू बी लविंग, टू बी कंपैशनेट, टू बी काइंड। और बीइंग में होकर के फिर हम जो भी करते हैं, उस जो भी हमारा रोल होगा, वो बीइंग की पर्सनालिटी उसके अंदर आती है,
2: उससे ऑटोमेटिकली आएगी।
3: एज लॉन्ग एज आप बीइंग का ध्यान रखते हैं, आपको हमेशा फील होगा आपकी लाइफ बहुत फुलफिलिंग है।
2: अच्छा,
3: रोल से मैटर नहीं करेगा। आप नर्स भी हो सकते हैं, आप डॉक्टर भी हो सकते हैं, आपका कोई भी रोल होगा, बट अगर आप बीइंग में रहकर के वो रोल प्ले करेंगे, यू विल बी एबल टू मेक अ डिफरेंस इन अदर पीपल्स लाइफ एंड योर लाइफ।
2: वेरी नाइस।
3: आप खुद भी जॉयफुली वो रोल प्ले करेंगे एंड यू विल बी एबल टू क्रिएट सम डिफरेंस।
2: वेरी नाइस।
3: डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने की जरूरत नहीं है, जरूरी है कि वो रोल हम कैसे प्ले
2: कैसे
3: करते हैं।
2: है।
3: कभी कभी बहुत सिंपल सा भी रोल होगा, सिंपल सा भी व्यक्ति होगा, वो कुछ ऐसा कह करके चला जाता है या कुछ
2: प्रोफाउंड होता है।
3: बहुत प्रोफाउंड होता है। सो एज लॉन्ग एज आप बीइंग स्टेज पर हैं, यू आर एग्जिस्टिंग एंड यू आर प्लेइंग योर रोल वंडरफुली।
2: वेरी नाइस।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है, गिल्ट से बाहर कैसे निकले जब गलती सुधारी ना जा सके। अगर आपसे गलती हो गई हो, आप उसे दिल से स्वीकार भी कर रहे हैं, फिर भी आपका पार्टनर आपको माफ नहीं करता या अपनाने के लिए तैयार ना हो, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए?
3: बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो गिल्ट क्या होता है, रियलाइजेशन बहुत जरूरी है, लेकिन गिल्ट अच्छा नहीं है
2: जी।
3: गिल्ट होता है कंटिन्यूस नेगेटिव थॉट्स। रियलाइजेशन जरूरी होता है, आपने रियलाइज किया कि आपने गलती करी है, लेकिन गिल्ट होता है मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा हूँ, मैं बहुत खराब व्यक्ति हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, नेगेटिव थिंकिंग है। वो आपको डिप्लीट करती है और चांसेस हो जाते हैं कि आपसे दोबारा गलती होगी।
2: ये बहुत जरूरी समझना।
3: हाँ, क्योंकि आप जितने कमजोर होंगे तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
2: बिल्कुल।
3: तो 1 second ऑफ गिल्ट इज इम्पोर्टेंट। आप उसको 1 second ऑफ गिल्ट बोले या रियलाइजेशन बोले, वो रियलाइज करना जरूरी है। जिन्होंने सवाल लिखा उन्होंने रियलाइज किया है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो हमारे से गलती ही नहीं हो ये नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं मनुष्य गलतियों का पुतला, मना जो दौड़ता है वही गिरता है, जो चलता है वही फिसलता है। अगर आप कुछ करेंगे तो आपसे कभी ना कभी भूल हो जाती है। ये नहीं होना चाहिए कि वो भूल अगर आप दोबारा करते हैं तो हम कई बार कहते हैं ये चॉइस है। आप फिर तीसरी बार करते हैं तो ये हैबिट है, चौथी बार करते हैं तो ये तो कैरेक्टर है, वो अलग चीज है। लेकिन आपने एक बार आपसे कुछ हुआ, आपने उस चीज को रियलाइज किया और आपने उस चीज के लिए अपोलोजाइज भी किया, फिर भी अगर सामने वाला नहीं स्वीकारता तो ये उनकी प्रॉब्लम है। इस प्लेटफॉर्म पर हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हम में से कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है जिससे कभी कोई गलती ना हो। हम सब गलतियां करते हैं, हम रियलाइज करते हैं, हम सीखते हैं, हम बेटर बनते हैं। और हमारे पार्टनर का ये, हम दोनों पार्टनर माना जो भी रिश्ते में है, लक्ष्य होना चाहिए कि हम दूसरा चांस दे कि व्यक्ति अपने को बेटर वर्जन बना सके। यही तो हमारा रोल है। पर कभी कभी हम इतने इमोशनली वीक होते हैं कि उनकी गलती से हम इतने हर्ट हो जाते हैं और उस हर्ट से बाहर नहीं निकलना चाहते और उसके लिए कंटिन्यूस किसी दूसरे को ब्लेम करना चाहते हैं। आप एक बहुत अच्छा व्यक्ति खो देंगे।
2: कभी कभी ये भी होता है कि शायद जो चीज है जिस कारण ये प्रॉब्लम हो रही है या जो गलती है वो शायद इतनी बड़ी है जिसके लिए सामने वाला आपको नहीं माफ करना चाहता। इट कुड बी अडल्ट्री, इट कुड बी समथिंग जो मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता।
3: कितनी भी बड़ी हो, अडल्ट्री भी हो, कितनी भी बड़ी हो, देन ऑल्सो आई फील कि अगर वो रियलाइज करते हैं एक चांस तो देना चाहिए। हैबिट है कि नहीं वो आप देखें। एक होता है कि आपने चांस दिया पर वो उनका संस्कार है, वो बार बार करते हैं, रियलाइज भी नहीं करते, उनके मन में उस चीज का कोई पश्चाताप भी नहीं है, वो है ही ऐसे इंसान, तब आप डिसाइड करें आपको क्या करना है। पर आप कहें कि वो एक बार भी ऐसा नहीं करेगा, ये होना ही नहीं चाहिए।
2: चांस तो देना बनता है
3: हर एक को। आज हमारे से भी कोई गलती हो सकती है, अगर हम गलती करते हैं और हमें कोई चांस देता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हम कहते दोबारा नहीं हम कर सकते, हम इस व्यक्ति का फेथ नहीं तोड़ सकते। तो ये कह देना कि नहीं ये रेड फ्लैग है, ये एक बार हो गया तो रिश्ता ही खत्म, ऐसा नहीं होता। दो जने हैं रिश्ते के अंदर, हर चीज के लिए आपको तैयार होना चाहिए और कम से कम एक चांस तो हर एक को देना ही चाहिए। इतना जल्दी रिश्ता खत्म करना, वो भी तो फिर रिश्ते की कोई फाउंडेशन नहीं रहे ना।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
1: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
0: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
1: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
0: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
1: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
0: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
2: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
3: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 Only on Mirchi, it's hot.

0: Raj Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, कुछ सवाल आए हैं। निकिता गुप्ता लखनऊ से लिखती हैं कि नमस्ते मैम, मैं बहुत परेशान रहती हूं अपनी बीमारियों से। इस कारण बहुत चिड़चिड़ी रहती हूं और गुस्सा भी बहुत आता है। बेटा सुनता नहीं है, छोटा है, मन में नेगेटिविटी है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा। लॉन्ग टाइम से तबीयत खराब रहती है। बेटे की फिक्र और बीमारी के कारण जॉब भी छोड़ दी मैंने। प्लीज सजेस्ट करें कि मैं पॉजिटिव और खुश कैसे रहूं। फैमिली में भी कम सपोर्ट मिलता है हस्बैंड और सास का।
3: बीमारी का पेपर इजी नहीं होता है, क्योंकि और किसी भी चीज से आप थोड़ा किनारा कर पाते हैं, लेकिन बॉडी से आप किनारा नहीं कर सकते हैं। सो इट इज वन ऑफ द वेरी डिफिकल्ट, होता है वेरी चैलेंजिंग टाइम ऑफ लाइफ, अगर एक के बाद एक बीमारी आती है। लेकिन फिर भी हम हमेशा कहते हैं कि पेन इज कंपल्सरी, लेकिन सफरिंग इज ऑप्शनल। जिसका ये मतलब है कि शरीर को बीमारी है, आप शरीर नहीं है, आप शरीर से अलग है। तो शरीर को कोई बीमारी है, है, आप उसका ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, डॉक्टर्स जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका मन बीमार हो गया कि मेरे को ये बीमारी क्यों आ रही है, मेरे बच्चे का क्या होगा, इतने समय से बीमारी आ रही है, हमारे घर में तो कुछ ठीक हो ही नहीं रहा, जब एक बार आप ये सोचना शुरू कर देते हैं तो वो शरीर की बीमारी भी ठीक नहीं होगी, चाहे डॉक्टर कितना भी ट्राई कर ले,
2: नुकसान ही करेगी आपको उल्टा।
3: मतलब बहुत देर लगेगी आपकी जो रिकवरी है, आपकी जो बीमारी है उसको ठीक होने में समय लगेगा। सेकेंडली, आप अंदर में इरिटेट हो रहे हैं अपनी बीमारी को लेकर, तो आप वो इरिटेशन अपने बच्चे को रेडिएट कर रहे हैं।
2: जी बिल्कुल,
3: इसलिए वो बच्चा आपसे दूर जा रहा है और आपकी बात नहीं मान रहा। और फिर जब हम ऐसे इरिटेटेड रहते हैं तो घर का माहौल भी सारा वो हो जाता है। तो बीमारी का पेपर बाहर से आया था, लेकिन बाकी जो सारे पेपर है, एक रिश्ता खराब हो रहा है, घर का माहौल खराब हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बीमारी में आपने अपना ध्यान नहीं रखा, अपने मन का ध्यान नहीं रखा। तो इस बीमारी में भी आप कहें, बीमारी भी कल्याणकारी है। परमात्मा कहता है हर चीज कल्याणकारी है। आप इस बीमारी को भी कहें, आई है चली जाएंगी, हर सीन आती है चली जाएंगी, ट्रीटमेंट भी लेते रहें, लेकिन अपने मन का ध्यान रखें, मैं खुश हूँ, शरीर बीमार है।
2: सही बात है, ये बोलते रहें आप,
3: अपने को बार बार याद दिलाएं, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, आप खुश रहेंगे, खुशी मन की स्थिति है। जब आप अपने को कहेंगे चलो शरीर बीमार है, लेकिन हम फाइनेंशियली स्टेबल हैं, बहुत अच्छा परिवार है, इतना अच्छा बच्चा है, भगवान का दिया हुआ इतना सब कुछ है, एक विघ्न आया वो भी चला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो आपको छोटी लगेगी। पर आप कहेंगे बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, तो फिर वो छोटी बात भी बड़ी लगने लगती है।
2: सही बात।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: दिस गोल्डन आवर इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क। सुनहरी होगी ड्राइव, जब तनिष्क गोल्ड ज्वेलरी से सुनहरी होगी हर वाइब।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: अगर आपका प्रोफेशन ही सोशल मीडिया से जुड़ा हो तो उसके साइड इफेक्ट्स से अपनी मेंटल वेलबींग को कैसे बचाएं? आइए जानते हैं।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: सिस्टर, हम कई बार बात करते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग, शायद मैं इंक्लूडेड, हम अपने आप को पाते हैं कि हम फोन पे कई देर से हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं, और कुछ देर बाद लगता है कि यार हम फिजूल में ही अपना समय बर्बाद कर रहे थे। तो आप कई बार कहते हैं कि इसे डिस्कनेक्ट होना बहुत जरूरी है और पीस की खोज करने की जरूरत है एक्सेट्रा। मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, उनका काम यही होता है कि चाहे वो डिजिटल मार्केटर हो, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर हो, उनका काम होता है कि वो तमाम उन सब चीज़ों के बारे में पता करें कि भाई दुनिया में क्या हो रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, किस पे हमको अब अगला रील बनाना है, किस पे अपना नेक्स्ट वीडियो हमको जिसके बारे में लिखना हो, वो क्या करें, क्योंकि उनका तो काम ही है कि इसको फॉलो करें, पता करें क्या हो रहा है। और अगर हम रीलें देख ही ना रहे होंगे, वीडियो देख ना रहे होंगे, तो हमको पता ही नहीं होगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। उनका रेंट उससे चलता है, उनकी जो पूरी आमदनी है वो उस पे है। वो कैसे अपने आप को इससे डिटैच करें?
5: नहीं, जरूरी है, अगर वो आपका एरिया है तो आपको वो चीज स्टडी तो करनी पड़ेंगे, लेकिन अगर वो चीज आपके ऊपर इम्पैक्ट डालती है तो आपको कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा अपने को और इमोशनली स्ट्रांग बनाने के लिए कि उसका उतना इम्पैक्ट नहीं। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर्स होते हैं, वो किस एनवायरमेंट में रहते हैं सारा दिन?
4: हॉस्पिटल में पेशेंट्स के साथ, बीमारियों के बीच।
5: तो जो अभी बीमारियों के साथ आप देखें, अगर आपका प्रोफेशन है कि आप सारा दिन दर्द के बीच में, दुख के बीच में, भय के बीच में, चिंता के बीच में रहते हैं, तो उनको भी हम सिखाया जाता है कि अगर आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया,
4: डिस्कनेक्ट करना बहुत जरूरी है।
5: अगर आप डिस्कनेक्ट नहीं हुए और किसी दूसरी चीज से आपने अपने को रिचार्ज नहीं किया, तो उनमें भी कंपैशन फटीक आ जाता है।
4: बहुत बढ़िया,
5: उनके पास स्किल है, उनके पास टैलेंट है, लेकिन अगर आपने अपने मन को उससे डिस्कनेक्ट करके रिचार्ज नहीं किया, सिर्फ डिस्कनेक्ट नहीं करना है, एक है मैंने नेगेटिव से डिस्कनेक्ट किया, पर मैंने क्या पॉजिटिव से उसको भरा, दोनों चीजें हैं। तो डिस्कनेक्ट करना, फिर अपने को रिचार्ज करना, फिर वापस आना कि आप दे सके। सिमिलरली कंटेंट स्टिमुलेट करता है। अगर आपकी ये फील्ड है कि आपको बहुत कंटेंट देखना पड़ता है, बहुत स्टडी करना पड़ता है, तो आपका ब्रेन, आपका मन हमेशा स्टिमुलेटेड रहता है। तो आप फिर बीच बीच में ऐसे पॉजेस लेते हैं, अपने को साइलेंट ब्रेक देते हैं कि आपका मन स्लो डाउन कर सके, और फिर आप कोई प्रकार का मेडिटेशन प्रैक्टिस करें कि वो स्टिमुलेशन रिलैक्सेशन में बदले, फिर रिलैक्सेशन रिचार्जिंग में बदले, तो उतना टोल आपके ऊपर उस चीज का नहीं लेगा। बाकी आप छोड़ नहीं सकते, ये तो हर एक की फील्ड है। आपको युद्ध के मैदान में है तो वो कह रहे ये कैसा है, यहाँ तो हमेशा फियर रहता है, वेदर कंडीशंस ऐसी हैं, पर आप उसमें देखते हैं आप क्या कर सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर कम से कम पड़े।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: yoga class.
1: My name is Nidhi Singh. HR कुछ नहीं करता पर HR सारा काम करवाता है. I would just say that. And then between me and the leader that you're saying, the boss, we take the blame game. Okay, आज तुम्हारा बारी है, next time मेरा बारी है. We'll divide amongst ourselves together. So, if you see that HR कुछ नहीं करता, it will be the same statement that you want to make that घर की माँ क्या करती है और घर की wife क्या करती है. कुछ नहीं करती. But then imagine a life without the wife. My biggest example will be Lina Nair. She was an HR, but now she's running Chanel, the most iconic brand in America. That's what HR do, that, you know, they have the complete business acumen. They are the pillars and they are the partners to a successful organization. So if you want to say HR kuch nahi karta, then your organization is not successful. So when we always say that, oh my God, we are so busy and we cannot make time for ourselves, that's the time you really need the meditation. Because if you cannot make time for yourself, that's a warning sign. When we are talking to leaders, we talk about start, stop, continue. So those are the organizational skills that we use for driving the efficiency. But then what are you doing to reduce the noise that you have that's going on in your mental state? So what are you doing there? Are you doing your start, stop, continue for yourself? I've also taken my certification in mental health first aider. And the first thing that we talk about for your mental well-being will be, what are you doing to reduce the thoughts? Like, if I want to say that, okay, what has yoga given me? Or what have I experienced in yoga? I would like to say that I have started to feel what I was not experiencing before. You are there, part of so many meetings, so many things, and you want to get involved. But are you really involved? Are you really focused? Are you really present? So those are the questions that you should be asking yourself, that you have so much noise, so many things, you're multitasking so many things. But at the same time, are you there in the moment? So what meditation does to you is connects you with your own inner being, and you enjoy the present. And I'll just quote Kung Fu Panda, that present is really the gift. It's now, which is the joy, which is the real thing. And the meditation, what it helps is, it reduces or stops that noise, and it brings you in the present. And you truly enjoy your moments with your family, with your work. You become efficient because now that noise has reduced. Now you're not thinking about 101 things that you have to do, but at least do one thing that matters. Like, for example, you're with your kids and kids understand that, oh my God, my mom is present with me, but she's not present with me. And believe me, now I have my young kids who are not that young anymore, and they call me out. Mommy, you're here and you're saying that you're spending time with us, but you're not. You are on your text. You are answering to those people. So when we say that we are so busy and we want to have a quality life, then that's the time you have to really connect with yourself and really give value to the work you're doing, to the relationships. And that's where I think the yoga or the meditation tunes in, connects with yourself, and you are able to give your 100%. You are there in the present. When you talk to people, you are really making those everlasting connections. And that's what is going to last. So when you say that you're very busy, no. You can never be busy for yourself, because it's going to in turn help yourself.
2: Celebrate yoga with us on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
3: This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
7: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
0: NRSP is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, NA, Concord, California.
8: Jai Gurudev, Gayatri Chetna Center, Piscataway. Aapne ane aapna parivar ne Guru Purnima ane Rudrabhishek Mahotsav ma sneh bharyu aamantran aape che. Shanivar 1 August e savare 10 vage Shirji Rudrabhishek ane sanje 5 vage Virat Deep Yagna. Ravivar 2 August e savare 10 vage 251 Kundiya Gayatri Mahayagna. શાંત કુંજ હરિદ્વાર ના પૂજ્ય સંતો દ્વારા વૈદિક વિધિ મુજબ અનુષ્ઠાન અને ડોક્ટર ચિન્મય પંડ્યાજીની પાવન ઉપસ્થિતિ 732-357-8200 જય ગુરુદેવ
9: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and PsyUSAInc.com.
10: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155 लॉग ऑन टू lionmtg.com
11: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
12: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
13: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
14: क्या बोर्डम या एंटरटेनमेंट के लिए बार बार सोशल मीडिया का सहारा लेना एक हेल्दी हैबिट है आइए समझते हैं
15: नमस्कार आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया
16: सिस्टर आपने रिचार्ज की बात बहुत अच्छी कही हमारे शो का नाम भी मिर्ची रिचार्ज मंत्रा है कई बार मैं इन लोगों से मिलता हूँ वो कहते हैं कि रिचार्ज ही हमारा ये है कि रिचार्ज का मतलब तो होता है ना रिचार्ज फिर से चार्ज करो अपने आप को तो ये देख देख के हम रिचार्ज होते हैं हमें पता चलता है दुनिया में क्या हो रहा है हम क्या मिस कर रहे हैं हमें और क्या करना है हमें कितना आगे बढ़ना है तो हमारे लिए डिस्कनेक्ट करना ही कनेक्ट करना होता है तो ऐसे लोगों को क्या कहें
14: दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि आप अगर मूवी देख रहे हैं तो आप वापस अपने को स्टिमुलेट कर रहे हैं
16: जी
14: हमें अपने को स्टिमुलेट नहीं करना संकल्पों को थोड़ा सा स्लो डाउन करना है तो कभी कभी हमें लगता है कि ये एंटरटेनमेंट है पर एक्चुअली वो हमें और थका रहा होता है इसलिए आपने कई बार देखा होगा जब लोग एक दो घंटा कर लेते हैं ना फिर उनको बहुत एग्जॉस्टेड फील होता है टायर्ड फील होता है
16: मेंटली भी और फिजिकली भी
14: क्योंकि आपने स्टिमुलेट किया उसको प्रोसेस करने का टाइम नहीं मिला मन को तो प्रोसेस करना पड़ेगा फिर आप सो भी गए तो भी आपकी बॉडी सोई मन वो सारा का सारा प्रोसेस कर रहा है फिर आप उठ करके कहते हो तो फ्रेश फील नहीं हो रहा क्योंकि मन को तो मन का सोना मना मन के संकल्पों की स्पीड कम होना उसको डेल्टा स्टेज में जाना जहाँ आपके मिनट में 4-5 थॉट्स हो वो होता ही नहीं है उससे पहले उठने का समय हो जाता है तो इसलिए रिलैक्सेशन उसको कहेंगे जो कुछ आपको स्टिमुलेट नहीं कर रहा Sometimes just sitting and not doing anything is also relaxation.
16: और ये बहुत मुश्किल होता है करना
14: इनिशियली होगा फिर आपको अच्छा लगने लगेगा अगर आपको अपने को स्टिमुलेशन की आदत पड़ी हुई है तो आपको मुश्किल होगा इनिशियली मुश्किल लगता है साइलेंस एक फॉरेन लैंग्वेज हो गई है पर ट्राई करना चाहिए आप जब पहले करेंगे तो आपको लगेगा चलो बुक उठा लूं चलो कोई देख लूं नहीं तो किसी को फोन पर बात कर लूं पर वो सब आप क्या कर रहे हैं वापस स्टिमुलेट कर रहे हैं ट्राई करना कि 15 मिनट बैठेंगे कुछ भी नहीं करना तो आप अपने थॉट्स के साथ हैं वो अपने आप स्लो डाउन हो जाएंगे आप उनको ऑब्जर्व करेंगे वो अपने आप स्लो डाउन हो जाएंगे बीच बीच में एक मिनट के पॉजेस लेना साइलेंट ब्रेक्स लेना यही आपको रिचार्ज करेगा और दूसरा जो चीज रिचार्ज करती है आप इतना सारा कॉन्टेंट देख रहे हैं जिसका वाइब्रेशन नेगेटिव भी हो सकता है वरी का भी हो सकता है फियर का भी हो सकता है तो थोड़ा समय ऐसा कॉन्टेंट कंज्यूम करना चाहिए जो आपको एम्पावर करे मैंने शायद पहले भी कहा था पर मुझे ये बात हमेशा याद रहती है कि जब अपने सीरीज शुरू हुई थी अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी शिवानी बहन का था शी सेड समथिंग आफ्टर एन ईयर कि बहुत लोगों ने आकर के जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि 25 मिनट्स का वो एपिसोड होता था पर बहुत सारे लोग देखते देखते देखते देखते उनका एक्सपीरियंस था कि उसने उनको डिप्रेशन से बाहर निकाला बट व्हाट स्ट्रक मी वाज नॉट दिस एंड शी सेड समथिंग व्हिच हैज ऑलवेज स्टेड विद मी कि अगर 25 मिनट का पॉजिटिव मीडिया किसी को डिप्रेशन से निकाल सकता है तो घंटों घंटों का नेगेटिव मीडिया का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा वो डिप्रेशन में ले जा भी तो सकता है ना तो रिचार्ज का मतलब है साइलेंट ब्रेक्स भी हो लेकिन पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन का इनटेक भी हो
16: बहुत बढ़िया
13: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: आवर एनिवर्सरी इज कमिंग अप, शैल वी रिन्यू आवर वाउज?
5: एब्सोल्युटली, एंड व्हाइल वी आर एट इट आई शुड रिन्यू सम ऑफ माय ओल्ड ज्वेलरी टू।
4: रिन्यू?
5: या आई विल एक्सचेंज।

0: Energy, it's hot.
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते. टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
2: इट्स 8:30 AM मिर्ची टाइम चेक ब्रॉट यू बाय आरके ज्वेलर्स. आरके ज्वेलर्स ज्वेलरी में सिर्फ एक ही नाम आरके ज्वेलर्स. बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: डिजिटल डिटॉक्स आपके मेंटल हेल्थ और इमोशनल बैलेंस के लिए इतना जरूरी क्यों है, आइए इस बात को समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, हम अक्सर डिजिटल डिटॉक्स के बारे में बात करते हैं। मोबाइल फोन बहुत बड़ा एक मुद्दा बन गया हमारे जिंदगी में। तो जैसा कि आप जानते हैं, मेरे घर में एक छोटी सी बेटी है और वो उस एक टीनेज फेज में है जहाँ पे बाकी जनरेशन की तरह मोबाइल फोन शायद उसका सबसे क्लोज दोस्त बन गया है। तो कई बार क्या होता है, कई घंटों तक जब वो फोन पे रहती है तो मैं उसको कहता हूँ कि अब हो गया, इसको साइड में रख दो, और कभी कभी ये बात जिद पे जा आती है। तो या तो वो अपना आपा खो देती है या मैं कभी कभी थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता हूँ कि भाई कितनी बार तुमको बोल दिया फोन साइड पर रखो, और ये बात जो है वो उस दिशा में नहीं जाती जहाँ पे मैं उसको ले जाना चाहता। ऐसे केस में मैंने एक चीज रियलाइज की कि अब ये फोन जो है ना, वो जो आप कहती हैं कि एक बार आपने बोल दिया फिर आप पेशेंट रहिए, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपको बदलाव दिखाई देगा, मुझे लगने लगा कि फोन एक एडिक्शन की तरह हो गया और मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा एडिक्शन में और ज्यादा घुसे, और मैं वो हटाना चाहता हूँ। और हटाना भी सबसे अच्छा तरीका नहीं है, वो भी मैं समझता हूँ, लेकिन ये कश्मकश में मैं कहाँ जाऊँ जहाँ मैं जानता हूँ कि उसके लिए अच्छा नहीं है। तो मैं उसको उस वक्त छोड़ नहीं सकता उस एडिक्शन के साथ, और अगर मैं ले लूँ तो आई एम नॉट अ गुड पेरेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उसको हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। बट उस एग्जैक्ट मोमेंट में मुझे क्या करना चाहिए?
1: See, हमने ये कई बार डिस्कस किया कि लेना तो ऑप्शन अभी रह ही नहीं गया है, क्योंकि अगर आप ले भी लेंगे तो वो कोई दूसरा ले आएंगे और छिपाएंगे।
3: हाँ, वो लैपटॉप पे अपना व्हाट्सएप खोल लेती है।
1: एजुकेशन पर्पस से भी अभी उनके लिए वो चीज जरूरी है, तो वो एक जो ऑप्शन होता था पहले के समय पर, हम केबल काट देंगे, हम टीवी नहीं रखेंगे, हम फोन ही नहीं देंगे।
3: हम बहुत अच्छे बच्चे थे।
1: हाँ, उस समय ऐसा होता था कि वो चीज ही नहीं आपको मिलती थी, तो आपका एडिक्शन था ही नहीं। आई थिंक टुडे आई डोंट थिंक दैट इज इवन अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि वो चीज में स्कूल के लिए भी उनको चाहिए, प्रोजेक्ट के लिए भी उनको चाहिए। दूसरी चीज जो हमने बात की थी कि जो हम नियम बनाते हैं वो मिल करके बनाने चाहिए। समझो, आपने अगर नियम बनाया है कि हम 11 तक यूज करेंगे, 12 तक यूज करेंगे, और वो जो नियम बनता है वो उस समय बनना चाहिए जब सब स्टेबल है,
3: उस वक्त नहीं जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं आप।
1: मेजोरिटी टाइम्स तो हम उसी समय सारी एडवाइस देते हैं ना, जिस समय वो उस चीज के अंदर फंसे हुए होते हैं, बिकॉज आई थिंक वो बच्चा भी छोड़ना चाहता है, पर वो एडिक्शन इतना ज्यादा है, उससे डोपामाइन मिल रहा है, उससे प्लेजर मिल रहा है। किसी भी चीज से अगर आपको प्लेजर मिलता है तो आप
3: तो
1: उसकी तरफ
3: मुश्किल
1: बहुत मुश्किल होता है, चाहे हम भी उसकी जगह हो, कोई भी चीज अगर आपको उससे इजी प्लेजर मिल रहा है, इजी है ना, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज इट इज वेरी इजीली एक्सेसिबल।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: क्या खुद के डिजिटल रूल्स और बाउंड्रीज बनाना फैमिली की वेलबींग और पीस के लिए फायदेमंद हो सकता है? आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: ऐसे केस में क्या करें जब सबकी रजामंदी से ये रूल बना है कि चलो रात को 11 या 12 बजे तक हम ये छोड़ देंगे, और फिर भी वो लगे हैं और आप उनको बोलते हैं अरे भाई हमारी बात हुई थी, तो कहते मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, वो रूल आपने बनाया था। अब बोले अरे भाई सबने मिलकर बनाया था, तो ऐसे केस में क्या करें?
4: अगर सबने मिलकर बनाया था फिर आप उनको रिमाइंडर भी देते हैं, पर आप रियलाइज करें कि इस मोमेंट में वो रेडी नहीं है। तो ज्यादातर क्या होता है, क्योंकि हमारे अंदर भी अटैचमेंट, मेरापन, मेरा बच्चा है,
3: मेरा बच्चा है,
4: मुझे कैसे मना कर सकता है, तो हमारा भी कंट्रोल जाग जाता है। वो एक प्रकार से सूक्ष्म देह अभिमान है, बॉडी कॉन्शियसनेस अटैचमेंट है ना,
3: ईगो है।
4: ईगो अटैचमेंट इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। आपको रिमाइंडर देना था, लेकिन आप रियलाइज कर रहे हैं कि वो सुनने की स्थिति में नहीं है। उस समय छोड़ देना चाहिए था। उस चीज को अगर आप बढ़ाएंगे तो रिश्ता खराब होगा। रिश्ता खराब होगा तो नेक्स्ट टाइम आप जो बोलेंगे वो उसका उल्टा ही होगा।
3: सिस्टर अगर उस समय मैं छोड़ दूं तो कब करूं वापस?
4: सिर्फ उस मोमेंट में छोड़ दूं, क्योंकि आपको रियलाइज हो रहा है कि दे आर राइट नाउ नॉट इन द मूड।
3: राइट,
4: नेक्स्ट डे फाइंड आउट द राइट टाइम एंड टॉक अबाउट इट। हम बात कब करते हैं? जिस दिन बच्चा फेल हुआ, जिस दिन वो फोन पर लगे हुए हैं, जिस दिन वो अभी अभी क्लब में जा रहे हैं, जिस दिन, जिस समय वो उसके अंदर है और उनको मिल रहा है, आप उस समय उनको कहते हैं अभी अभी छोड़ो, वो नहीं होगा।
3: तो सही समय खोज के उस पे बातचीत करिए और फिर उनकी सहमति से आप इसका हल निकालने की कोशिश करें।
4: हम मेजॉरिटी सही समय पर बात नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें लगता है फिर कुछ हो जाएगा। जितना समय अच्छा चल रहा
3: तो रहता है,
4: फिर आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, पर वो करना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम उस समय पर आप भी स्टेबल हैं, वो भी स्टेबल हैं, वो आपको बताएंगे ना कि हाँ मैंने ही अग्री किया था, लेकिन मेरा मन बहुत डिस्टर्ब था, तो मैं फोन को एस्केपिज्म की तरह यूज कर रहा था, आपसे कुछ बात करेंगे, तो आप भी उनको समझ पाएंगे। सी द मोमेंट यू स्टार्ट कंट्रोलिंग समबडी वो शट हो जाएंगे। एक पेरेंट को वो चीज नहीं करनी चाहिए। आपको लगता है मेरा हक है बच्चे के ऊपर, आप पेरेंट हैं, अच्छी पालना देना आपका रोल है, पर किसी भी दूसरे इंडिविजुअल पर आपका हक नहीं है। सी, हर एक को जो चीज चाहिए वो फ्रीडम है। हमें ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, वेदर इट इज एट अ वर्क प्लेस, वेदर इट इज एट अ सेंटर, आश्रम में भी आप किसी को कहें अच्छा 4 बजे मेडिटेशन के लिए उठना है, ये नियम है, उठे नहीं कंट्रोल, ऐसा नहीं होता है। आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ हर एक की दिल हो कि अच्छा मुझे भी उठना है, मुझे भी ये करना है, मुझे ये डिसिप्लिन फॉलो करने हैं, क्योंकि इन डिसिप्लिन के अंदर मेरा फायदा है। फिर आप कैपेसिटी के अनुसार कभी कर पाएंगे, कभी नहीं भी कर पाएंगे, लेकिन उस दिन अगर कोई आपको कंट्रोल करे
3: तब आप नहीं करेंगे,
4: आप और डिप्लीट हो जाएंगे ना, आपसे वो चीज होंगे नहीं। तो जिस मोमेंट में आपको लग रहा था कि वो नहीं सुन रहे, आपको लेट गो कर देना चाहिए था, आपको छोड़ देना चाहिए था, पर वहाँ जब हम कंट्रोल करते हैं तो वो रिश्ता खराब होता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, गिनी विधानी का एक सवाल इंस्टाग्राम के हैंडल पे आया कि आज लोग मेडिटेशन और इनर ग्रोथ से ज्यादा AI और टेक्नोलॉजी को महत्व दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो भविष्य कैसा होगा? टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड बट मेंटली अनरेस्ट रहेगा, या फिर दोनों के बीच कोई बैलेंस बन पाएगा?
3: बैलेंस तो बनाना ही पड़ेगा ना। साधना और साधन दोनों जरूरी है।
2: अरे वाह, क्या बात है, साधना और साधन दोनों जरूरी, बहुत खूबसूरत।
3: और साधना वाला ही साधन पर कभी डिपेंडेंट नहीं होगा।
2: क्या बात, वेरी नाइस।
3: तो माना जो साधना करते हैं, जो इनर वर्क करते हैं, वो इंडिपेंडेंट, इमोशनली इंडिपेंडेंट होते हैं, वो साधन को यूज करेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी हमेशा उनके लिए सर्वेंट है। वो टेक्नोलॉजी को कभी भी अपना मास्टर नहीं बनने देते, वो टेक्नोलॉजी के गुलाम नहीं बनते। तो ये एक पर्सनल लेवल पर हमें दोनों को प्रायोरिटाइज करना है, क्योंकि हम ये भी नहीं कह सकते कि हम टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करेंगे।
2: क्या बात,
3: वो भी पॉसिबल नहीं है। अभी सब कुछ टेक्नोलॉजी पर होता है, वो लाइफ को इजी बनाते हैं, लेकिन साधना और साधन का बैलेंस रख।
2: क्या बात है, तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि बाहर की दौड़ में खुद को नहीं खोना, अंदर की जो कश्मकश है और अंदर जो चल रहा है वही असली खजाना है।
3: आपकी बात बहुत सुंदर है, लेकिन एक और चीज, हमें कई बार लगता है कि बाहर की प्राप्ति से अंदर की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी।
2: उल्टा होता है,
3: नहीं, दोनों पर मेहनत करनी पड़ती है। जैसे एक गार्डन आपके घर के बाहर है, एक गार्डन आपके घर के पीछे है। आप सोचे, बाहर वाले जो घर के आगे जो दिखाई दे रहा है, अगर उसके ऊपर मेहनत कर ले, वो हरा भरा है, उसमें बहुत सुंदर,
2: तो पीछे वाले में ऐसा जरूर
3: नहीं, ऐसे नहीं होता,
2: मेहनत तो उस पर भी करनी।
3: तो हम अगर अपने को बहुत एडवांस बना लें, टेक्नोलॉजी से अपडेट रखें, AI भी चला लेते हैं, तो आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो सकते हैं, आप पोजीशन में ग्रो कर सकते हैं, आप मटेरियल लेवल पर ग्रो कर सकते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि उस ग्रोथ के साथ साथ आपके इनर ग्रोथ, आपकी जो कंटेंटमेंट है, पीस है, कंपैशन है, काइंडनेस है, वो अपने आप ही बढ़ जाएंगे।
2: बहुत बढ़िया,
3: तो ये दोनों अलग चीज है,
2: और दोनों पे काम करना,
3: दोनों पर काम करना जरूरी है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है। निशु मरमत लिखती हैं कि मेरा एक सवाल है आपसे, जो ये भविष्य मलिका में लिखा होता है कि आने वाला टाइम बहुत बुरा है मानव के लिए, सब लोग डरे हुए हैं, इसको पॉजिटिव वाइब्स में कैसे लाया जाए?
3: आने वाला टाइम डिफिकल्ट है या बुरा है वो तो किसी को भी नहीं पता, पर आपको फील होता है। उसका रीजन है क्योंकि हर जगह भय है, चिंता है, वरी है, एंगर है। जब आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हर जगह दिख रहे हैं, पायस से पायस इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये सत्युग तो नहीं हो सकता, ये कलयुग है। अब किसी भी चीज से या तो आप डर सकते हैं या आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं कि उसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर ना पड़े। फॉर एग्जांपल, एग्जाम है, आप एग्जाम से डर भी सकते हैं
2: या पढ़ सकते हैं,
3: या आप इतने अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम देना है। उसी एग्जाम में किसी बच्चे को बहुत डर लगता है, उसी एग्जाम में कोई बच्चा लुक फॉरवर्ड करता है,
2: सही बात है,
3: कि एग्जाम आए तो मैं वो एग्जाम दूं क्योंकि उसने प्रिपेयर किया है। तो कल क्या होगा वो हमें से किसी को भी नहीं पता, पर प्रिपरेशन ये होती है कि दिखाई दे रहा है अनसर्टन है, किसी भी समय जॉब छूट जाती है, अचानक बीमारी आ जाती है, डरने की जगह मेरे साथ कुछ हो ना जाए, मेरे साथ कुछ हो ना जाए, मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, आप अपने को इतना स्टेबल बनाए कि जो होगा विल फेस इट ना, जो होगा विल सी, समस्या नहीं समाधान ढूंढेंगे।
2: मुझे अब्राहम लिंकन की बहुत कमाल की लाइनें याद आ गई। वो कहते हैं द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर is to create it.
3: Yeah, absolutely.
0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: It's 9:30 AM. Mirchi Time Check brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry में सिर्फ एक ही नाम RK Jewels. Best quality, best price.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर ब्रजेश वडोदरा से लिखते हैं कि नमस्ते, मैं रेडियो मिर्ची और श्रेया दीदी का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ। आप दोनों को ढेर सारा प्यार। हम अपने बच्चों को स्पिरिचुअलिटी की ओर कैसे प्रोत्साहित करें? जब हम सतयुग की बात करते हैं तो बच्चे तर्क देते हैं कि मशीन या मेहनत के बिना कुछ भी बनाना संभव नहीं है, तो केवल विचारों से सृष्टि कैसे हो सकती है?
3: देखो, जब हम बच्चों को स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो बच्चों के लेवल पर आकर के करनी चाहिए। पहली बात तो बच्चों के लेवल पर आने का मतलब ये है कि आप अगर चाहेंगे कि वो डेली स्पिरिचुअल क्लास अटेंड करें, हो सकता है शायद वो उतने इंक्लाइंड नहीं हो
2: जी।
3: कुछ दिन पहले मैं एक पेरेंट के साथ मिली थी, तो उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों के साथ लेकिन 10 मिनट जरूर बैठते हैं।
2: हाँ।
3: कुछ अच्छी बातों के ऊपर डिस्कशन जरूर करते हैं।
2: हाँ।
3: और एक हमारा कॉमन प्रैक्टिस है घर के अंदर कि अब बच्चों को हैप्पी मोमेंट जरूर लिखना है।
2: अरे वाह, क्या
3: वो दोनों स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, हस्बैंड वाइफ, और वो बच्चों को रोज का, बच्चों को भी आदत पड़ गई कि कितने भी थके हुए होंगे, उनके वाइफ सुना रही थी कि वो बच्चे कितने भी थके हुए होंगे
2: लेकिन वो लिखेंगे जरूर,
3: उनको पता है कि पापा ने पूछना ही है। और वो सिंगर है, खरीश मोयल सिंगर है, उनके डॉटर नित्या मोयल एक्टर है, बिजी है, वो लोग परफॉर्म करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर उनके घर का नियम है, ये उनकी पेरेंटिंग है कि रात को आपको अपना हैप्पी मोमेंट आकर लिखना ही है। तो कहते हैं बच्चों के अंदर भी अभी ये कॉन्शियसनेस है सारे दिन के अंदर कि जा करके कोई हैप्पी मोमेंट लिखना है, तो मोमेंट दिन में होना भी तो चाहिए ना। तो वो दिन भर में अवेयर होते हैं कि मुझे सब कुछ हैप्पीली करना है तो मैं अपने मोमेंट्स के अंदर लिख सकूं। अब वो कल्चर है घर का, तो कल्चर है कि जब आपको लिखना है तो फिर आपको करना भी पड़ेगा। सो दे हैव स्टार्टेड लिविंग देयर लाइव्स विद लॉट ऑफ हैप्पीनेस,
2: वेरी नाइस,
3: एंड नाउ दे लुक फॉरवर्ड टू इट। दे लुक फॉरवर्ड कि हम एक दूसरे को बताएं कि हमारे दिन का हैप्पी मोमेंट क्या था। तो बच्चे हैं, बच्चे के लेवल पर जाना पड़ेगा। सेकंड, आई रिमेम्बर दिस मदर शेयरिंग कि जब भी वो टिफिन पैक करते हैं तो वो एक स्लिप पेपर के ऊपर कोई एक अच्छी बात, कोई एक अच्छी स्टोरी, कुछ एक अच्छा उसके अंदर लिख कर देते हैं। अब वो जो बच्चा है, नाउ ही लुक्स फॉरवर्ड टू इट, धीरे धीरे, जैसे वो चिकन सूप की हमारी किताबें हुआ करती थी, वो बहुत स्पिरिचुअली एम्पावरिंग होती थी। पर कोई एक स्टोरी अगर आपको पता है कि आपको रोज मिलने वाली है, अब कहते बाकी बच्चे पहले देखते थे टिफिन में क्या आया है,
2: अब वो देखते मेरे टिफिन में क्या आया है,
3: अब वो मेरे में क्या, हाँ, क्या स्टोरी है, उस चीज का सबको इंतजार होता है। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कुछ ऐसी बातें जो आपको पॉजिटिव बना रही है, कुछ ऐसी बातें जो आपके अंदर पीस, हैप्पीनेस, कंपैशन, फॉरगिवनेस क्रिएट कर रही है, वो स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम फिलॉसफी और इन सब चीजों की बात करें, अच्छी अच्छी बातें सुनना, देखना, पढ़ना, उसकी एक आदत पढ़ना, वो स्ट्रांग होंगे। अगर हम कहीं स्पिरिचुअली डीप एस्पेक्ट नहीं समझ पाते हैं तो हमारी बुद्धि वहां तक डेवलप नहीं हुई होती है। जैसे अगर एक स्कूल के बच्चे को आप इंजीनियरिंग के क्लास में बिठा दें तो वो जो वहाँ पर सुना रहे हैं वो गलत नहीं है, बच्चे की बुद्धि उतनी डेवलप नहीं हुई होती है। कई स्पिरिचुअल जो बातें होती हैं डीप होती हैं, उसके अंदर तर्क होता है, उसके अंदर रैशनैलिटी होती है, उसके अंदर कुछ लॉजिक होता है, पर मे बी आई एम नॉट उतना बुद्धि से डेवलप कि उसको समझ सके। अब उसको आप जबरदस्ती उसमें समझाने की कोशिश करेंगे या आर्ग्यू करेंगे तो उनका मन फिर जो अच्छी बात है उससे भी उठ जाता है। इसलिए गो स्लो, जहाँ ए समझना है वहाँ ए समझना है, जहाँ एप्पल समझना है वहाँ एप्पल समझना है। तो ये भी नर्सरी से लेकर इंजीनियरिंग तक एक स्लो प्रोसेस है ना।
2: वेरी नाइस।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
3: पहले भी मैं तुमसे मिला।
4: Singing world का सैयारा, none other than Vishal Mishra.
5: Vishal Mishra.
2: Jetty of Sai USA Inc. presents A Night Larger Than Life, Vishal Mishra's Pagalpan Tour. Friday, June 26th, Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City. Book your tickets at Ticketmaster.com
6: and SaiUSAInc.com.
2: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
8: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, विद्युत शाह का एक सवाल है कि क्या स्पिरिचुअलिटी हमारी असक्षमताओं को और असफलताओं को छुपाने का इजी तरीका है?
3: एब्सोल्युटली नॉट। उनको एक्सेप्ट करने का तरीका है और एक्सेप्ट करके उनको ट्रांसफॉर्म करने का तरीका है।
2: तो एक्चुअली हमको सक्षम बनाने का तरीका है और सफल बनाने का तरीका है
3: स्पिरिचुअलिटी। आई डोंट नो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, बट स्पिरिचुअलिटी आपको एम्पावर करती है। तो फिर जो आपको करना है वो आप कर पाते हैं। कई बार क्या होता है, हम कुछ कर नहीं पाते तो हमें लगता है हम फेलियर है। हम फेलियर नहीं होते। आई एम नॉट अ फेलियर, आई एम नॉट इनएफिशिएंट, और इट इज जस्ट आई हैव नॉट टेकन आउट दैट टाइम टू वर्क ऑन माई सेल्फ। स्पिरिचुअलिटी आपको एम्पावर करती है।
2: आई डोंट नो ये किस मुद्दे से या मकसद से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, जो इंसान जिंदगी को आराम से ले रहा होता है या जो सहज मन से चलता है, जो शांत होता है, उसको वीक माना जाता है। तो कहीं ना कहीं शायद वो सवाल वहां से आ रहा होगा कि क्या ये हम अपनी असफलताओं को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं।
3: कई लोग ऐसा समझते हैं, ये भी एक आप बहुत अच्छा कह रहे हैं। इनफैक्ट कॉर्पोरेट शादी में भी कई बार टॉक होगा ना, तुमको कहेंगे आप इतना शांत नहीं कर देना इतना। सो समवेयर यू फील कि स्पिरिचुअलिटी विल मेक यू वेरी कंटेंट इन लाइफ, फिर तो कोई डिजायर नहीं होगी, फिर आप भागेंगे नहीं, फिर आपके गोल्स नहीं होंगे। एक्चुअली वो पर्पस नहीं है। पर्पस क्या होता है कि हम अपनी जर्नी को एंजॉय कर सके। वैसे भी आप देखें, जैसे एक आप पहाड़ भी चढ़ते हैं तो आपको व्यू तो ऊपर से ही मिलता है, है ना? लेकिन जो आप बनते हैं वो चढ़ने से बनते हैं। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ी, आपने जो एंजॉय किया वो समिट पे जो आप जो व्यू है ना, वो बेसिकली रिजल्ट है। वो एक गिफ्ट की तरह है। तो देखने में लगता है कि इट इज द एंड गोल, बट जो आपको बनाता है इट इज ऑलवेज द जर्नी। सो स्पिरिचुअलिटी ऑलवेज फोकसेस ऑन द जर्नी कि मान अपमान है, निंदा स्तुति है, हार जीत है, सफलता असफलता है, इट इज ओके। हर चीज आपको ग्रो करती है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट गोइंग थ्रू इट, इट्स अबाउट ग्रोइंग थ्रू इट। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट चैलेंजेस, बट द चैलेंजेस आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर यू टू ग्रो। तो बेसिकली वो आपको वीक नहीं बनाती, वो तो बहुत आपको स्ट्रांग बनाती है। इनफैक्ट जिस समय पर आप कोलैप्स कर सकते हैं उस समय पर भी आप बहुत स्टेबल खड़े होते हैं। लेटली आई मेट दिस सिस्टर, एक ट्रिप पे थी तो उन्होंने सुनाया कि वो स्पिरिचुअलिटी में उनको सिर्फ 4 months हुए थे चलते हुए। वो मेडिटेशन प्रैक्टिस करती है, क्लास करती है, और उनकी डॉटर थी जिसको अचानक हेडेक्स होने शुरू हुए।
2: अच्छा।
3: अब वो खुद भी डॉक्टर है, हस्बैंड भी डॉक्टर है, और एक ही डॉटर है 9th standard में।
2: अच्छा।
3: और पहले की बात सुना रही थी कि उसको काफी हेडेक्स हुए, उन्होंने काफी डॉक्टर्स को दिखाया, चेकअप कराया, डायग्नोस ही नहीं हो पाया क्या हो रहा है, सीवियर हेडेक्स पर डायग्नोस नहीं हो पा रहा। एंड शी सेड कि मैंने अपना जॉब छोड़ा क्योंकि उसको होम स्कूलिंग करनी पड़ी। वो स्कूल नहीं जा पाती थी। देन इट बिकेम सो सीवियर कि वो ब्रश करने गई और वहीं गिर गई, बेहोश हो गई, किसी को पता ही नहीं चला कि वो कर रही है। एंड दिस कंटिन्यूड फॉर 4 years। 4 years she said we went to the best doctors Indore mein, Mumbai mein, everywhere, neurosurgeon, sab kuch, par diagnosis hi nahi hua. 4 years ke baad wo ekdam khatam ho gaya.
2: Achha.
3: Kya bimari thi pata nahi. Then she could go back to college. Abhi wo bhi apni medicine kar rahi hai. But she said wo 4 years ka jo period tha itna challenging. Agar main spiritually strong nahi hoti, stable nahi hoti, to kabhi bhi hum usko cross nahi kar pate, kyunki us samay par usko homeschool karna, treatment dena, उसके दर्द से परे रहना। एंड शी सेड दिस स्टेटमेंट विच वी लर्न, शी सेड हम जो एक लाइन कहते हैं, साक्षी होकर के देखो तो वातावरण का सेख भी नहीं पड़ेगा। मैंने इफ यू आर डिटैच्ड, डिटैच का मतलब बच्चे से डिटैच नहीं, बच्चे के दर्द से बहुत पेनफुल है ना, आपका योर ओन चाइल्ड इज इन सो मच पेन। सो डिटैच आप किससे हो रहे हैं, नेगेटिविटी से, दर्द से, सिचुएशन से नहीं, व्यक्ति से नहीं। हम डिटैचमेंट किससे समझते हैं, व्यक्ति या परिस्थिति से।
2: बहुत खूबसूरत।
3: यू आर इन द मिडल ऑफ दैट सिचुएशन,
2: वेरी नाइस,
3: आप उस समय पर हैं। एंड दैट इज वाई स्पिरिचुअलिटी जो है, हम कहते हैं कि अगर आप साक्षी होकर के देखेंगे तो वातावरण का सेक नहीं पड़ेगा, माना जो एनवायरमेंट है
2: उसका
3: इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा। सो स्पिरिचुअलिटी आई फील इज नॉट मेकिंग यू वीक, इट इज रादर गिविंग यू दैट स्ट्रेंथ टू डील विद व्हाटएवर चैलेंजेस यू आर गोइंग थ्रू।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: इतना पसंद था ये गाना, इनफैक्ट अभी भी है, बट मेरे दो भाई यशराज मुखाटे एंड केतन सिंह हैव रूइंड इट फॉर मी नाउ। दैट वाज बेशरम रंग, इस हफ्ते गाना नंबर 7 पर।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: ट्रूली वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स दिस ईयर। पठान के इस गाने ने पागलपन मचाया। इट स्टेड ऑन नंबर 1 फॉर सो मेनी वीक्स, लेकिन अब नई फिल्मों के आते खिसक रहा है थोड़ा थोड़ा। दिस वीक इट्स ऑन नंबर 7 फ्रॉम नंबर 4 लास्ट वीक। एंड माय नेम इज सुरेन एंड दिस इज द मिर्ची डॉट 20। एंड ये जो दो दोस्त है मेरे, केतन जो खुद एक रेडियो जॉकी रह चुका है, एंड यशराज मुखाटे, इन दोनों ने दिमाग में अब ये नया वर्जन डाल दिया है। इफ यू रिमेम्बर, मैंने बताया था कि बेशरम रंग की जो लिखावट है वो थोड़ी ओल्ड स्कूल है। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, एंड दीज टू डिसाइडेड दैट ये एक 60 के दशक का वर्जन बनाएंगे। एंड अगर रफी साहब इस गाने को गाते तो शायद ये कुछ ऐसा सुनाई देता।
2: ना

I hate it so much that I actually love it. मतलब हंसी भी आ रही है और नाज भी है इन दोनों भाइयों पर. खैर आगे बढ़ना है और गाना नंबर 6 हमारा इंतजार कर रहा है. इट्स अ ब्रांड न्यू सॉन्ग. इट्स फ्रॉम मिस्टर पंजाबी अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म सेल्फी. गाने का नाम है कुड़िये नी तेरी. इट्स मेकिंग इट्स डेब्यू हियर ऑन नंबर 6 ऑन द मिर्ची टॉप 20 विद मी सुरेन. नंबर 6.

0: ताज्जुब नहीं होगा अगर ये गाना नंबर वन तक जाए, बिकॉज ऑल्सो इट इज माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ द चार्ट्स, तेरे प्यार में बाय अरिजीत सिंह फ्रॉम तू झूठी मैं मक्कार। बॉयज एंड गर्ल्स, फॉर दोस जिनको फिल्मों का ज्यादा आइडिया नहीं है, तो ये फिल्म तू झूठी मैं मक्कार डायरेक्ट की है मिस्टर लव रंजन ने। एंड लव ने जो चार फिल्म में इससे पहले डायरेक्ट की हैं, ऑल ऑफ देम फीचर्ड हिज फेवरेट पेयर कार्तिक आर्यन एंड नुसरत भरूचा। अब कार्तिक तो नेक्स्ट लेवल स्टार बन गया है, एंड सो इज नुसरत। सो लव ऑल्सो डिसाइडेड कि अब यार मैं बड़ी फिल्म बनाऊंगा, एंड तब तू झूठी मैं मक्कार हैपेंड। मिर्ची टॉप 20 पे आई एम सुरेन, एंड द वन थिंग दैट इज रियली अमेजिंग इज द न्यू पेयरिंग ऑफ द टू कपूर्स, रणबीर एंड श्रद्धा। दोनों फिल्म फैमिली से हैं, दोनों फैमिली फ्रेंड्स, दोनों के डैडीज अच्छे दोस्त, बट अब तक दोनों ने साथ में काम नहीं किया था। एंड द बेस्ट पार्ट, दे बोथ एक्चुअली लुक गुड टुगेदर। बट दोनों को एक दूसरे के साथ फिल्म करना क्या रास आया, जान लेते हैं।
1: Everybody knows that you know Ranbir is such a fabulous actor, and I've always admired his work. And ये experience करने के लिए on set with him बहुत मजा आया, and he is really superb.
2: So I've known Shraddha since I guess she was born and I was born, because our parents are friendly, and so we've been friends for a long time. But working with her, I really realized that, you know, we share similar creative energies. I think she comes with the same kind of passion, dedication and fire, you know, to give her best. I think it is love's genius that she casted both of us together. So thank you, love.
3: Thank you.
2: I give you credit for this also.
0: I really like their chemistry and I hope it does work some magic. And क्या है कि प्रीतम दा ने जो गाना बनाया है उसका जोन, उसकी वाइब एक और गाने से काफी मिलती जुलती है। बट उससे पहले आपको बता दूं इस हफ्ते का गाना नंबर 3 कौन सा है।
4: झूमे जो पठान मेरी जान, महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान, उस पे मर मिट जाए।
0: अब मैं क्या कह रहा था कि ये जो गाना है तेरे प्यार में, इट डज साउंड लाइक अनदर सॉन्ग दैट आई रियली लव। जो फीलिंग, जो वाइब थी लव आजकल 2 के गाने में, आई फाउंड इट हियर एज वेल। एंड दैट इज व्हाई मेरे इस हफ्ते का पिक ऑफ द वीक है हां मैं गलत, वंस अगेन बाय अरिजीत सिंह एंड प्रीतम दा ऑन द मिर्ची टॉप 20 विद मी सुरेन।

0: आसन। इसमें आपको बॉस के हर काम को हाँ करने के लिए अपनी गर्दन और मुंह ऊपर नीचे करनी होती है। ट्राई करो, ऊपर नीचे, वेरी गुड। इस यस बॉस आसन से आपकी चापलूसी करने की क्षमता बनी रहती है, और ये आसन करने से मसल ग्रोथ तो अच्छी होती ही है और करियर ग्रोथ भी टनाटन हो जाती है।
1: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
2: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
6: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
7: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
8: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
9: नो
10: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
11: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
12: पहले भी मैं तुमसे मिला।
13: सिंगिंग वर्ल्ड का सैयारा, नॉन अदर देन विशाल मिश्रा।
14: विशाल मिश्रा।
11: अमित चेटी ऑफ साई USA इंक प्रेजेंट्स अ नाइट लार्जर देन लाइफ, विशाल मिश्रा's पागलपन टूर, फ्राइडे जून 26th, हार्ड रॉक लाइव, ईटेस अरीना, अटलांटिक सिटी। बुक योर टिकट्स एट ticketmaster.com
15: एंड saiusainc.com।
16: Oak Tree Road लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च इस्तनर कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर।
17: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स, GIA सॉलिटेयर्स, नेकलेसेस, रिंग्स, मरियू स्टनिंग पेंडेंट्स। कृष्णा ज्वेलर्स, ओक ट्री रोड, ईसलिन।

0: डूड, इस गाने का ओरिजिनल 12 साल पहले ही तो आया था। इतनी जल्दी, इतना पुराना थोड़ी ना हो सकता है कि इसका नया वर्जन निकालना पड़ जाए।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: प्रीतम दा को खुद ही के गाने रिहैश करने पड़ रहे हैं। मे बी ये मार्केट की डिमांड है, बट आई डोंट थिंक प्रीतम दा खुद ये करना चाहते होंगे। मिर्ची टॉप 20 पे इट्स मी सुरेन, एंड कैरेक्टर ढीला है 2.0 इज द ब्रांड न्यू एंट्री ऑन द चार्ट्स, एंड ये सीधा आया है नंबर 2 पर, एंड दैट इज अनबिलीवेबल। और इस गाने की पॉपुलैरिटी के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है कार्तिक आर्यन की खुद की पॉपुलैरिटी, क्योंकि आजकल कार्तिक जो भी करता है वो सोना बन जाता है। एंड प्रीतम दा हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन मेनी हिट सॉन्ग्स इन कार्तिक्स 10-year-old करियर, और ये बात कार्तिक खुद एक्नॉलेज करता है।
2: प्रीतम दा का जो म्यूजिक हमेशा रहा है, बीट एनी फिल्म ऑफ माइन, पिछले जो भूल भुलैया 2 आई थी या फ्रेडी भी आई थी, उन दोनों के भी गाने काफी चले थे, फ्रॉम द टाइटल ट्रैक टू काला जादू लास्ट ईयर, दिस ईयर ऑल्सो, अभी ये एक एक करके गाने और खुलने वाले हैं। इसमें मुंडा सोना हूँ अभी काफी चल रहा है, एंड रिसेंटली मेरे सवाल का जो रोमांटिक ट्रैक है, अगेन इट्स ऑन, मतलब मैं ट्रेंडिंग लिस्ट बेसिकली, सो दीज आर ऑल वर्किंग, एंड सो आई हैव बीन रियली लकी विद म्यूजिक। एंड म्यूजिक काफी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एस्पेक्ट होता है एक एक्टर के करियर को, एक अलग सा उसको एक हीरोइज्म दर्शाने में, या फिर उसको एक उस लेवल पे पहुंचाने के लिए। सो आई हैव बीन, बी इट सोनू टीटू का म्यूजिक, बी इट भूल भुलैया का म्यूजिक, और बी इट एनी अदर फिल्म ऑफ माइंड, ये म्यूजिक हैज ऑलवेज बीन लुका छुपी। तो आई थिंक ये फिल्म में भी वही हो रहा है शहजादा में, एंड थिएटर्स में खींचती है ऑडियंस को, ये तो वो बहुत जरूरी है।
0: भाई को तो प्रीतम दा का साथ भी मिल गया है, विच मींस ये एक सुपरस्टार होने का सबसे बड़ा सबूत है। रणबीर से पूछ के देखो, वो भी यही बताएगा। ऑलराइट, सो नाउ द नंबर 1 सॉन्ग मिर्ची टॉप 20 पे, वी हैव अ न्यू किंग। जिस गाने ने पिछले हफ्ते डेब्यू किया नंबर 3 पे, इस हफ्ते आ गया है सीधा नंबर 1 पे, राइडिंग द नॉस्टैल्जिया एक्सप्रेस, तनिष्क बागची की एक और उपज, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फ्रॉम अक्षय कुमार एंड इमरान हाशमीज अपकमिंग फिल्म सेल्फी। सो बेसिकली दो गाने ऑन द टॉप 2 पोजीशंस जो है पुराने गाने। Talks about your taste more than mine. Check it out. You're on the Mirchi Top 20. I am Surin.
1: Number 1.

0: आपको क्या लगा हम भूल गए?
1: इंटरेस्टिंगली उदित जी ने अपने हिस्से तो फिर गाए हैं बट अभिजीत दा के पुराने हिस्से रिटेन किए गए हैं। मे बी ना कर दी उन्होंने, मे बी ही डिडंट केयर। खैर, इस हफ्ते का नंबर वन गाना मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, लेकिन इस शो मिर्ची डॉट 20 का खिलाड़ी अब आपको कहता है बाय बाय। आई बी बैक सेम प्लेस सेम चैनल सेम टाइम। मेरे DMs में स्लाइड करने के लिए सुरेन सुरेन ऑफिशियल इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सुरेन ओवर एंड आउट।
2: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: It's 10:30 AM मिर्ची टाइम चेक,
4: ब्रॉट टू यू बाय आरके जूल्स। आरके जूल्स, ज्वेलरी में सिर्फ एक ही नाम, आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
0: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं, सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: Milchi.
1: Iskaba na puskaba na sakaba na. Rabala. Burga, burga. La vieja la burga. Milchi, burga.
2: Hello.
3: Hello, Mr. Whipple, man. से बोल रहा हूँ आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए आपके मोबाइल का इनबॉक्स तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे
2: इनबॉक्स चाहिए इनबॉक्स कैसा मतलब
3: मैं आपको वही समझा रहा हूँ एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है तो सर्वर में जो डेटा होता है अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ ठीक है सर
2: नहीं नहीं बात तो सुनो भाई साहब
3: हाँ बताइए
2: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना
3: नहीं वो हम खींच लेंगे आप उसकी फिक्र मत करिए
2: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे
3: मैं कुछ भी करूँ यार आप ज्यादा बहस करते क्यों एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं आप मुझसे बहस कर रहे हैं
2: बहस वाली बात नहीं मतलब मैं खुद मालूम तो करूँ ना अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
3: बिल्कुल,
2: से कम मुझे
3: बिल्कुल सही बिल्कुल सही कह रहे हैं
2: जा कहाँ रहा है
3: नहीं वो जा कहाँ रहा है जा यहीं रहा है आपकी कंपनी में जा रहा है और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए अब उसमें आपको टेंशन क्या है हम आपके मैसेजेस रखेंगे उसको पढ़ेंगे सही से
2: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें मैं ऐसे किस तरह से दे दूँ उसको
3: वैसे आप बुरा मत मानना आपके ये मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉन वेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें
2: यार क्या बात कर रहा
3: हूँ नॉन वेज एसएमएस क्यों रखे हुए यार आपने उसमें बेकार की बातें कर रहे हैं आप कंपनी को जरूरत है क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए मेरी बात सुनिए
2: चल
3: नहीं नहीं आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है रुकिए रुकिए सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी आपके बर्तन आपके कपड़े तक उतरवा सकती है
2: बिल्कुल
3: क्या बात कर रहे हैं मेरी बात सुनिए आप पूरी हेलो
2: हेलो
3: हेलो भाई साहब आपने फोन काट दिया यार इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं आप फोन काट रहे हैं यार
2: आपको से फोन मत करियो मैं इनबॉक्स बना दूंगा दिमाग खराब कर दिया
3: क्या क्या क्या क्या यार बात सुनिए आप मेरी मैं आपसे सिर्फ एक बात एक बार विपुल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा तुम रेडियो मिर्ची पे हो
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and SciUSAInc.com.
8: Welcome to the 46th North American Bengali Conference, hosted by the Cultural Association of Bengal. New York mein ek aisa grand sangam, jahan hamari roots aur aane wala kal ek ho jate hain.
7: From the profound classical magic of Amjad Ali Khan and Kaushiki Chakrabarty to the legendary global beats of Vishal Shekhar.
8: Cinema, literature, timeless theatre aur hamari sadiyon purani ada, bringing a global community back to its home.
7: July 3rd to 5th at Westchester County Center, New York. Register now at nabcap.com.
9: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
11: कुछ आवाजें होती हैं जो सीधा दिल तक पहुंचती हैं।
12: सतीश मलिक और अनीमा जौहरी प्राउडली प्रेजेंट एन एंचेंटिंग म्यूजिकल कॉन्सर्ट बाय क्लासिकली ट्रेन्ड डॉक्टर मीनल मडेगांवकर का एक टाइमलेस म्यूजिकल कॉन्सर्ट जिनका साथ देंगे रिनाउंड तबला आर्टिस्ट अभय दातर और हारमोनियम उस्ताद निनाद जोशी
11: और इस खास शाम में एक दिल को छू लेने वाला ट्रिब्यूट टू आशा भोसले
13: अभी न जाओ छोड़ कर
12: 28th June 3 PM at ITV Gold Auditorium Oak Tree Road call Satish right now at 862-812-9111
14: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
15: Mirchi Yoga Class. Mirchi Yoga Class.
16: Hello everyone, I'm so excited to be here. You're listening to Neha Chan. I'm currently working as an audit and inspection lead in a pharmaceutical company. My role is to ensure that my team, my company stay compliant against all the regulations. So I don't do yoga, it's part of me now. It is basically what I have learned throughout practicing it from 20 years. It becomes my lifestyle. So all the qualities, all the good things that I see, it's depicted in my behavior. So I don't have to put an extra effort to do it. It's just that I am in it. I'm enjoying it. I feel the peace of it most of the time. Yoga, what does it mean? It means union. Union with yourself. So if you find who you are and you know how to connect to yourself, to be aware of yourself, to the deeper sense, I think that's what it is. I think everyone is seeking that peace, that who am I? And if you find that, who you are, so you do need a discipline, right? You cannot just take it for granted. It's basically, definitely, it's like a penance that you have to put into yourself to cleansing you. Like how you outshine the gold, right? By going through the penance, same as like to know yourself. There are so much vices outside, and you know, when you stuck into those vices, you lose the connection. So it's always training your attention to get it back, what is important for you and what is real and what is unreal. When you're able to distinguish through your discretion, six, whatever the time I'm waking up, there's no heart. Because if you put a pressure to do something, that's again an anxiety to you. But when it's flowing, so whatever time I wake up, that's my routine. I go sit in meditation until I feel that connection with myself, until I feel that joy flowing into me, that peace in myself, the complete satisfaction, the balance in my emotions and my actions. And so then I start my work. And the days when I start my work like that, it just flows into it. And I end my day with, again, letting go, because you absorb so much. You absorb the energy, you absorb the emotions. You are going out, you're absorbing, you're emitting, you're exchanging, right? Emotions, energy. And when I come back, that's where I cleanse myself again. Whatever I have absorbed for the day, I just want to analyze, introspect, and just say that, who am I again? And connect to that source of joy. Wants are never satiable. Huh. You have something, you want something else right at that moment.
0: Yes.
16: So whatever the material seeking that we have in ourselves, it's not going to give us that peace and satisfaction. Ultimately, you can have millions of things, but if you're not able to enjoy it, you're not able to use it, if it's not giving you that peace, it's of no use. You will have constant dissatisfaction within you. And this is what today's materialistic world is like. The, you know, the walls everywhere you see, advertisements, all focusing on mass predictions and fashions, which are short-lived, like fat, you know, fads, that's what called. It's not going to give you that peace, the joy, ultimately within yourself. But if you take a pause and you're able to enjoy what you have in the moment, that's what matters.
17: Celebrate yoga with us on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: अरे यू के बड़ा कोरी भाई, मजा।

0: परेशानी। जिम मेंबरशिप ले ली है, जा नहीं पा रहे। पुराने कपड़ों में आ नहीं पा रहे। एक काम करें, उसके बाद में एक और काम करें। वो दोनों खत्म हो जाए तो एक काम करें, फिर से एक काम करें, खूब सारे काम करें, 10 काम करें। करत करत अभ्यास ते शरीर से जाए सुजान। तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
1: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोवे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेह पूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
6: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
7: कुछ आवाजें सिर्फ गानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।
8: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे।
9: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा।
10: अरे मुझे कोई ट्रैक करे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
11: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One इज एन ऑल इन वन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सुइट, जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। यस, योर एंटायर बिजनेस। Zoho One इज इजी टू यूज, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One। गेट योर फ्री ट्रायल एट zoho.com/one।
12: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
13: Tera kya hoga, Kalya?
14: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
13: Ab mirchi kha.
15: Radio Mirchi, it's hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
3: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
2: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
4: Oak Tree Road lo best diamond jewelry kosam search chestunnara Krishna Jewelers me exclusive diamond store
5: top quality natural certified diamonds GIA solitaires necklaces rings mariyu stunning pendants Krishna Jewelers Oak Tree Road Esalen
6: सुनो ब्राइड्स अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
7: तो आइए फैशन क्वीन यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन
7: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इज़लिन

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Inefficient,
4: very complex,
5: clumsy or
6: confusion ही confusion.
1: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
7: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
1: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: Welcome to the 46th North American Bengali Conference, hosted by the Cultural Association of Bengal. New York mein ek aisa grand sangam, jahan hamari roots aur aane wala kal ek ho jate hain.
8: From the profound classical magic of Amjad Ali Khan and Kaushiki Chakrabarti to the legendary global beats of Vishal Shekhar.
7: Cinema, literature, timeless theatre aur hamari sadiyon purani ada, bringing a global community back to its home.
8: July 3rd to 5th at Westchester County Center, New York. Register now at nabcap.com.
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
9: अब मिर्ची खा।
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Buscabana, buscabana, sacabana. Rambana. Burga, burga. La vieva la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello, Mr. Vipul, ma'am. से बोल रहा हूँ आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए आपके मोबाइल का इनबॉक्स तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे
2: इनबॉक्स चाहिए इनबॉक्स कैसा मतलब
3: मैं आपको वही समझा रहा हूँ एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है तो सर्वर में जो डेटा होता है अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ ठीक है सर
2: नहीं बात तो सुनो भाई साहब
3: हाँ बताइए
2: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना
3: वो हम खींच लेंगे आप उसकी फिक्र मत करिए
2: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे
3: मैं कुछ भी करूँ यार आप ज्यादा बहस करते क्यों एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं आप मुझसे बहस कर रहे हैं
2: बहस वाली बात नहीं मतलब मैं खुद मालूम तो करूँ ना अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
3: बिल्कुल
2: से कम मुझे
3: बिल्कुल से, बिल्कुल सही कह रहे हैं
2: जा कहाँ रहा है
3: नहीं वो जा कहाँ रहा है जा यहीं रहा है आपकी कंपनी में जा रहा है और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए अब उसमें आपको टेंशन क्या है हम आपके मैसेजेस रखेंगे उसको पढ़ेंगे सही से
2: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें मैं ऐसे किस तरह से दे दूँ उसको
3: वैसे आप बुरा मत मानना आपके मना करने से मुझे लग रहा है कि आपने उसमें सारे नॉन वेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें
2: यार क्या बात कर रहा
3: मतलब नॉन वेज एसएमएस क्यों रखे हुए यार आपने उसमें बेकार की बातें कर रहे हैं आप कंपनी को जरूरत है क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए मेरी बात सुनिए
2: चल
3: नहीं नहीं आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है रुकिए रुकिए सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी आपके बर्तन आपके कपड़े तक उतरवा सकती है
2: बिल्कुल
3: क्या बात कर रहे हैं मेरी बात सुनिए आप पूरी हेलो
2: हेलो
3: हेलो भाई साहब आपने फोन काट दिया यार इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं फोन काट रहे हैं यार यार बात सुनिए आप मेरी मैं आपसे सिर्फ एक बात विपुल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा तुम रेडियो मिर्ची पे हो
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: गुड मॉर्निंग सांभळी रह्या छो मिर्ची हूँ छो कृतार्थ अच्छा कम्प्यूटर में बे बहु इंटरेस्टिंग बटन छे कि जेनु कॉम्बिनेशन बधीज वस्तुओं ने भुलावी दे गायब करी दे शिफ्ट अने डिलीट नॉर्मली अमे एकलू डिलीट दबाव ने तो रिसाइकल बीन में गमे त्यां ए डेटा स्टोर थयो रहे એને રિકવર કરી શકાય એ છતાંય તમારા કમ્પ્યુટરમાં હોય પણ શિફ્ટ અને ડિલીટ દબાવો એટલે પરમનન્ટલી ડિલીટ થઈ જાય મને ઘણી વખત એવો વિચાર આવે કે જો મારા ને તમારામાં પણ કોઈ આવું બટન હોત કે શિફ્ટ અને ડિલીટ દબાવીએ એટલે જે અમુક એવી વાતો કે જે મને ને તમને હમણાં સુધી હેરાન કરતી હોય એવા રિલેશન્સ કે જે બહુ જુંડા ઘા આપીને ગયા હોય એ હંમેશાના માટે ડિલીટ થઈ જાય વાત ખાલી એટલી છે કે ઘણી વખત સહન કરવું એના કરતા ભૂલી જવું એ વધારે સારું હોય છે ભૂલી જવું એ ક્યારેક ભાંગી જવા કરતા વધારે સારું આજના દિવસે વેકઅપ વિચાર અને રિમાઇન્ડર ખાલી એટલું જ છે કે એક લિસ્ટ તો બનાવો કે કઈ કઈ બાબતો એવી છે કે જે તમારી ઈચ્છા છે કે તમે ભૂલી જાઓ જે ભૂલવાથી તમારી મેન્ટલ હેલ્થ સુધરી જશે અને પછી હું તમને ઉપાય કહીશ કે એને કેવી રીતે જીવનમાંથી મગજમાંથી શિફ્ટ ડિલીટ કરવું પહેલા લિસ્ટ બનાવી લો લિસ્ટ બનાવીને મને મેસેજ કરજો યુ આર લિસનિંગ ટુ મિર્ચી ઇટ્સ હોટ ગુડ મોર્નિંગ હોપફુલી વાત સમજાઈ હોય તમને
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप 1213 न्यू जर्सी 27 सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप 700 हैरिस एवे मिडिलसेक्स इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर यू आर इन गुड हैंड्स
9: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
0: क्या आप हेल्थ केयर हासिल करने को लेकर परेशान हैं? क्या आपको पता है कि न्यूयॉर्क लोग परिवारों और छोटे बिजनेसेस के लिए कम दाम में हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान करता है? एप्लीकेशन की चिंता ना कीजिए, SACSS एनरोलमेंट स्पेशलिस्ट्स आपको पूरी प्रक्रिया में मदद करेंगे। हमारे स्टाफ मेंबर्स 20 से अधिक भाषाएं बोलते हैं और आपको सस्ती हेल्थ केयर दिलाने में मदद करेंगे। साउथ एशियन काउंसिल फॉर सोशल सर्विसेज को कॉल करें 718-321-7929 या SACSS ऑफिस विजिट करें 143-02 45th Ave, Flushing, New York. अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sacssny.org.
10: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
12: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
13: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
12: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
14: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
12: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
15: एक ही होता है।
12: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: अच्छा आज का आसन है यस बॉस आसन। इसमें आपको बॉस के हर काम को हाँ करने के लिए अपनी गर्दन और मुंह ऊपर नीचे करनी होती है। ट्राई करो ऊपर नीचे। वेरी गुड। इस यस बॉस आसन से आपकी चापलूसी करने की क्षमता बनी रहती है और ये आसन करने से मसल ग्रोथ तो अच्छी होती ही है और करियर ग्रोथ भी। टना टन हो जाती है।
1: तो इस योग दिवस

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and PsyUSAInc.com.
3: कुछ आवाजें सिर्फ गानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
5: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इजिलिन।
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga.
0: Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hi. ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही हैं?
2: आप कौन बोल रही हैं?
4: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
2: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
4: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
2: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
4: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
2: ये तो वहाँ से मेरे पास,
4: अरे यार
2: जैसे आपके पास आया कि अगर आप खाली बैठे,
4: हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है।
3: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही? अरे भाई यार, मैं लड़की के चक्कर में यार, कहां से आ रहे हो यार बीच में? मैं मेरी लाइन, मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार? तू लाइन में आ रहा हूँ, लाइन में आ रहा हूँ। अच्छा, एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे। हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरा कुछ जा रहा
2: है?
4: बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
3: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ूकू। सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
2: मुझे लग रहा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे भाई मालूम था ये।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बच्चा आज का आसन है यस बॉस आसन। इसमें आपको बॉस के हर काम को हाँ करने के लिए अपनी गर्दन और मुंह ऊपर नीचे करनी होती है। ट्राई करो, ऊपर नीचे, वेरी गुड। इस यस बॉस आसन से आपकी चापलूसी करने की क्षमता बनी रहती है, और ये आसन करने से मसल ग्रोथ तो अच्छी होती ही है और करियर ग्रोथ भी टनाटन हो जाती है।
1: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
2: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: Are you worried about accessing healthcare? Did you know that New York offers affordable health insurance for individuals, families and small businesses? Do not worry about the application. South Asian Council for Social Services enrollment specialists will help you with the process. Our staff speaks over 20 languages and we will help you get affordable healthcare. Call the South Asian Council for Social Services at 718-321-7929 or visit the SACSS office in person at 14302 45th Avenue in Flushing, New York. For more information, visit www.sacssny.org.
6: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
7: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
9: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद कल्याण ज्वेलर्स। गेट अप टू 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इज़लन, न्यू जर्सी। कंडीशंस अप्लाई।
10: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
11: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
10: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
11: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
12: आवर एनिवर्सरी इज़ कमिंग अप, शैल वी रिन्यू आवर वाउज?
13: एब्सोल्युटली, एंड व्हाइल वी आर एट इट, आई शुड रिन्यू सम ऑफ माय ओल्ड ज्वेलरी टू।
12: Renew?
13: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
12: What better way to celebrate than with something timeless?
13: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
14: Tera kya hoga, Kalia?
15: Sardar? मैंने आपका नमक खाया सरदार,
14: अब मिर्ची खा।
16: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
5: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
6: Listener mein back to back gana sunega.
7: Back to back gana sunega.
6: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Milchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambana. Murga, murga. La vieja la murga. Milchi, murga.
2: Hello.
3: Oh, madam, good evening.
2: Hi.
3: Bank se bolle ho na hamari nahi scheme aaye. Madam, taazi scheme hai, badhiya scheme hai. इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम
2: है। सब्जी बेच रहे हैं या लोन के लिए?
3: पहले पहले सब्जी बेचता था।
2: अगर अगली बार फोन आ गए ना।
3: मैडम तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत बात कर दो।
2: हेलो
3: मैडम, अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा
2: मारूंगी ना।
4: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, आपने ऊपर पड़ जाती है यार। आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया
2: है।
3: मेरा आपका तो मुर्गा बन गया है।
4: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं एक बार दिल्ली को सुना दूं?
2: नहीं,
4: से सॉरी
2: सॉरी।
4: प्यार से बोल दीजिए कोकड़ो को
2: कुकड़ू को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
9: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
7: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
10: आवर एनिवर्सरी इज कमिंग अप, शैल वी रिन्यू आवर वाउज?
11: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
10: Renew?
11: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
10: What better way to celebrate than with something timeless?
11: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
12: Finest kitchens in India. A thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
13: Bombay Express and Vaishnav Caterers, the finest indoor and outdoor catering service in USA. Live cooking on premises for engagements, marriage, baby shower, birthday parties, and adult daycare. We make fresh farsan and sweets in USA. Also providing daily tiffin services with delivery in New Jersey and New York. Call Bombay Express and Vaishnav Caterers today at 732-986-6241 or visit 2849 Woodbridge Avenue, Edison, New Jersey.
14: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and SaiUSAInc.com.
15: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
16: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
17: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
16: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
18: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
16: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
19: एक ही होता है।
16: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: परेशानी। जिम मेंबरशिप ले ली है, जा नहीं पा रहे। पुराने कपड़ों में आ नहीं पा रहे। एक काम करें, उसके बाद में एक और काम करें, वो दोनों खत्म हो जाए तो एक काम करें, फिर से एक काम करें, खूब सारे काम करें, 10 काम करें। करत करत अभ्यास ते शरीर से जाए सुजान। तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
1: सेलिब्रेट योगा विद हर्ट ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
5: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
6: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
5: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
7: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
9: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
11: Welcome to the 46th North American Bengali Conference, hosted by the Cultural Association of Bengal. New York mein ek aisa grand sangam, jahan hamari roots par aane wala kal ek ho jate hain.
12: From the profound classical magic of Amjad Ali Khan and Kaushiki Chakrabarti to the legendary global beats of Vishal Shekhar.
11: Cinema, literature, timeless theatre aur hamari sadiyon purani ada, bringing a global community back to its home.
12: July 3rd to 5th at Westchester County Center, New York. Register now at nabcap.com.
13: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
14: तेरा क्या होगा कालिया?
15: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
14: अब मिर्ची खा।
16: Radio Mirchi, it's hot.

0: It's 4:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
2: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था
3: शशि. वो मैनहट्टन है.
2: मैनहट्टन
4: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी.
3: टैन मतलब वो धूप की छाप.

0: 92.7 FM. Radio Mitri, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: It's 5 p.m. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
2: Ghana Indie Top 10.
3: Kanika ke saath. On Mirchi.
4: Mirchi sun rahe hai aap. Ab bari hai hafte ke hottest pop countdown ki. Hello and welcome. This is the Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This show is all about the hottest pop music of the week. Hafte ke top 10 hottest pop gaane. Ek nayi entry hai hamara 90s 2000s ka iconic indie pop gaana hai. Some special Ghana spotlight, all this and more. To seedha shuruaat karte hain is hafte ki, which is all about celebrating music. World Music Day ka week long celebration on Mirchi. Shuruaat karte hain on this countdown with Ghana number 10. अनीश सरकार हृदय का गाना, गाने का नाम है उड़ी उड़ी. दो हफ्ते से इस पोजीशन पर बरकरार. उड़ी उड़ी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद द कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग, आदित्य रिखारी, रैवट और कुटले खां का गाना, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके ए अजनबी इज ऑन गाना नंबर 9. दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
2: नंबर 10.

0: वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड म्यूजिक डे, लेकिन जो ये वाला गाना है आदित्य रिखारी की आवाज, रैवेटोर का म्यूजिक अलॉन्ग विद कुटले खान, ए अजनबी फ्रॉम कोक स्टूडियो भारत, इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न म्यूजिक. एक पॉप स्टार, एक फोक आर्टिस्ट और एक कंटेम्प्रेरी उबर कूल प्रोड्यूसर, ए अजनबी दिस वीक ऑन गाना नंबर 9.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बदी का नाम है आरजे कनिका. दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाइए, मेरा हैंडल इज @RJKanika. कोई गाना सजेस्ट करना है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप. आई ट्रूली रियली दिल से बिलीव दैट गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है. नाउ इस काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो एक तरह से हम सबके एक्सपीरियंसेस को कहीं ना कहीं कैप्चर करता है. आप मैं हर कोई एक जर्नी पर है, डेस्टिनेशन तो आने वाली है लेकिन ये जो रास्ता है ये बहुत खूबसूरत है और हम इसको तय करे जा रहे हैं, मेहनत करे जा रहे हैं, अपना घर छोड़ के, अपना शहर छोड़ के, अपने सपनों के पीछे हम काम कर रहे हैं. एंड समहाउ इंडिपेंडेंट म्यूजिक एग्जैक्टली उन फीलिंग्स को कैप्चर कर पाता है जो फिल्म म्यूजिक, बड़े पर्दे पे उतरने वाली कहानियां नहीं कर पाती हैं, क्योंकि ये वाली फीलिंग मे बी उस किरदार के लिए हो. बट व्हेन इट्स अबाउट इंडिपेंडेंट म्यूजिक, वो मेरी आपकी आर्टिस्ट की ऑनेस्ट फीलिंग है. यू नो, वो वाली फीलिंग जब हमारा सपना पूरा भी नहीं हुआ पर हम इतना तो आगे आ चुके हैं दैट वापस नहीं जा सकते, पर अब इतना आगे भी नहीं आए हैं कि सेलिब्रेट करना शुरू करें. गाने का नाम है लॉन्ग वे फ्रॉम होम. इट्स बाय MC Square, राधिका भिडे एंड विकेट सनी. मे बी ये नाम आपके लिए नए हो लेकिन जब आप गाना सुनेंगे आई नो इट विल हिट होम. म्यूजिक, गाने के लिरिक्स उस जर्नी को एक्नॉलेज करता है जो मुझे पता है यू आर ऑलरेडी ऑन इट. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. अ नई नवेली एंट्री इस गाने का नाम है लॉन्ग वे फ्रॉम होम बाय MC Square, राधिका भिडे, विकेट सनी, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 8. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 8. किसी के पीछे नहीं चलना था तो अपने ही रास्ते बना लिए. सस्ती ये दुनिया में आंखों ने ख्वाब मेरी थोड़े महंगे सजा लिए. आंखों पे चश्मे चढ़ा लिए कि सबको दिखे ये चेहरा हंसता हुआ. रुकी नहीं सांसे तो चल पड़ा फिर और कंधों पे बस्ते उठा लिए. दुनिया घुमा रही है, मैं भी कमाल हूँ, देखो ना घूमते जा रहा हूँ. कि टूटे ना हिम्मत इसलिए तस्वीर को माँ की मैं चूमते जा रहा हूँ. मिली ना मंजिल तो चल पड़ा मंदिर को, सोचा भगवान मिलेंगे जो पहले से अंदर है मुझ में बसा हुआ. मैं उसको ही ढूंढते जा रहा हूँ. है घर का वो छोटा जो कंधों पे जिम्मेदारी बड़ी लेके चला है. जब बैठा वो छाँव में उतारे जूते तब जाना वो कितना चला है. वो तो बस जानता ये कि करो भला तो बस होता भला. इतिहास गवाह है जो बांट के खाता उसे ऊपर वाले से कमी में लाए. घर वाले याद भी आते हैं, घर लौटो ये बाप नहीं चाहते हैं. जब पेट हो भूखा तो बिस्तर पे नींद तो आती पर ख्वाब नहीं आते हैं. चेहरे पे धूल लगी जिनके आईने घर के वो साफ दिखाते हैं. पेट वो भरते हैं भूख से ज्यादा जो अक्सर ही मांग के खाते हैं. टूटा है दिल, टूटा हूँ मैं पर फिर भी सब रोज संभाला है. कुछ ना कुछ कम ही पड़ा है जब से जिंदगी में होश संभाला है. लिखी है ऊपर वाले ने जिंदगी है या मौत की सजा. मौत ही होगी शायद क्योंकि कलम को अपनी वो तोड़ने वाला है.

0: ਵਾਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਬਜੇ ਮੈਂ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਖੁਲਾ ਆਜ ਵੀ ਕੁਆੜ ਪੜਾ ਇੱਕ ਚਰਖਾ ਖਾਲੀਆ ਦੀਮਕ ਨੇ ਪਰ ਦੇਖੇ ਮੇਰੀ
1: ਗੋਲਡ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਆਰ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਪਿਓਰ ਗੋਲਡ ਬਾਰਸ ਵਿਦ ਰਾਜ ਜੂਲਸ
2: ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਰੈਡੀ ਸਟਾਕ ਐਟ ਰਾਜ ਜੂਲਸ ਬਾਈ ਗੋਲਡ ਬਾਰਸ ਨਾਓ ਐਟ ਰਾਜ ਜੂਲਸ
3: ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ੇ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਦਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਤੀ ਹੈ
4: Satish Malik aur Anima Johri proudly present an enchanting musical concert by classically trained Dr. Meenal Madegaonkar ka ek timeless musical concert jinka saath denge renowned tabla artist Abhay Datar aur harmonium ustad Ninad Joshi
3: aur is khaas shaam mein ek dil ko chhu lene wala tribute to Asha Bhosle
5: abhi na jao chhod kar
4: 28th June 3 p.m. at ITV Gold Auditorium Oak Tree Road call Satish right now at 862-812-9111
6: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
7: Kisi zamane mein maa haathon se ghisti, pyar se kootti, muskura kar peesti. Apne ghar ke aangan mein din bhar un masalon ko sehlaye, khushiyon ke swaad चखती वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी दीप खाओ तो जानो
2: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
9: वो जो पहले तुमसे मिला था अब हम सबसे मिलने आ रहा है
10: पहले भी मैं तुमसे
11: सिंगिंग वर्ल्ड का सैयारा नॉन अदर देन विशाल मिश्रा
9: JT of Sai USA Inc. presents A Night Larger Than Life Vishal Mishra's Pagalpan Tour Friday, June 26th Hard Rock Live ETS Arena Atlantic City Book your tickets at Ticketmaster.com
12: and SaiUSAInc.com
13: कुछ आवाजें सिर्फ गानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक
14: मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2
15: तेरा क्या होगा कालिया
16: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार
15: अब मिर्ची का
17: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
18: गाना इंडी टॉप 10
19: कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 6

0: मिटर और स्वरा वर्मा की आवाज, मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा। पिछले हफ्ते से 6 पोजीशन ऊपर जम करके शीशा वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने सुना दिलजीत दोसांझ सिया का गाना रांझा, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका ऑन दिस शो जिसका नाम है गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करना बिल्कुल फ्री है। कोई गाना बताना है, कोई किस्सा कहानी शेयर करनी है, बिंदास आके हिट मी अप। आई ट्रूली बिलीव दैट जो गाने हमें पसंद आते हैं ना, जो एक्चुअल में दिल से पसंद आते हैं, जो हम जितनी बार सुने उतना कम लगता है, वो शायद उस गाने के साथ जुड़ा जो हमारा एक्सपीरियंस होता है उसकी वजह से अच्छे लगते हैं। ऑफ कोर्स इज मेलोडी, लिरिक्स, आर्टिस्ट्री, वो सब है, एंड कूडोस टू दैट, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द आर्ट एंड आर्टिस्ट। बट आज मैं ना उस गाने के एक्सपीरियंस के बारे में बात करना चाहती हूँ। ऐसा कैसे होता है दैट एक ही गाना अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखता है। किसी के लिए वो पहले ब्रेकअप का गाना है, किसी के लिए एक शाम जब वो अकेले थे छत पे बैठ के आसमान देख रहे थे, मे बी उस गाने की दो लाइन जो सीधा उनके दिल के उस स्पॉट को हिट कर गई जो खुद नहीं समझ पा रहे थे कि एग्जिस्ट भी करता है। एंड ऐसा वंस इन रेयर ब्लू मून होता है ना, कोई गाना ऐसा दिल में उतरता है कि जब हम कुछ सालों बाद उस गाने को सुनते हैं, वो गाना तो अच्छा लगता ही है, बट वी ऑल्सो रिमेम्बर दैट एक्सपीरियंस, उस दिन जैसा फील हुआ था। क्योंकि इस पूरे हफ्ते हम वर्ल्ड म्यूजिक डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, म्यूजिक इज ऑल अबाउट how it makes us feel. I want to tell you about this one song, जिसको जब मैंने पहली बार सुना था तो मेरी आंखों में एक्चुअली आंसू आ गए थे। साल 2016 की बात है, मेरा पहला गोवा ट्रिप मेरे दोस्तों के साथ। हम वैगेटर बीच पे थे, रात को 2 बज रहे थे, मजे कर रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मेरे दोस्त जैम कर रहे थे, मेरा एक दोस्त गाना गा रहा था और अपना गिटार उठाया एंड उसने ये गाना गाया,
2: शाम तन्हा,
0: कॉल्ड शाम तन्हा बाय अग्नि। मैं पूरा गाना आपके लिए डेफिनेटली प्ले करूंगी, बट आई वॉन्ट टू टेल यू वॉट दिस सॉन्ग मेड मी फील बैक देन। उसने कुछ अलग नहीं किया मेरे दोस्त ने, कोई ऐसे परफॉर्मेंस में चार चांद नहीं लगे, उसकी आवाज थी, समुंदर की हवा थी, या वो लाइन्स दैट तेरे जाने से मैं अधूरा रह गया, आई स्टिल डोंट नो व्हाट वाज इट, बट दैट सॉन्ग मेड मी वीप। मैं आंखें चुरा चुरा के अपने दोस्तों से रो रही थी, बिकॉज इट मेड मी फील समथिंग जो मुझे पता भी नहीं था कि मैं फील कर रही हूँ उस गाने से पहले। इट इज अ गॉर्जियस सॉन्ग, मुझे पता है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, बट बिकॉज ऑफ दैट वन एक्सपीरियंस दिस विल ऑलवेज बी वन ऑफ दोज वेरी चेरिश्ड मेमोरीज एंड वेरी चेरिश्ड सॉन्ग फॉर मी। हमने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। आज मेरी पसंद का स्पॉटलाइट, अग्नि द बैंड का गाना, गाने का नाम है शाम तन्हा। ट्रस्ट मी, दिस वन विल हिट होम। इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

Now back to the countdown. अगले वाले गाने की बारी. अनूप जैन की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग. गाने का नाम है अर्ज किया है. 21 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होकर अर्ज किया है इस प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 5.

0: परेशानी, आपके हाथ पीले नहीं हो रहे हैं क्योंकि क्रश को भेजे हुए मैसेजेस के टिक नीले नहीं हो रहे हैं। इसका उपचार है, गहरी सांस लें, अपने हाथों को ऊपर उठाएं और अपने हाथों के साथ साथ अपने एक्सपेक्टेशंस को भी नीचे ले आएं, क्योंकि तुम्हारी क्रश तुम्हारी लीग से बाहर है ब्रो। औकात में रहो, सुखी रहो। तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
1: सेलिब्रेट योगा विथ अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
5: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
6: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
5: Renew?
6: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
5: What better way to celebrate than with something timeless?
6: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
7: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and SaiUSAInc.com.
8: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
9: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
11: बॉम्बे एक्सप्रेस एंड वैष्णो केटरर्स, अमेरिका में सबसे बेहतरीन इंडोर और आउटडोर केटरिंग सेवा। सगाई, शादी, बेबी शावर, जन्मदिन पार्टियां और एडल्ट डे केयर, आपके स्थान पर लाइव कुकिंग की सुविधा। हम अमेरिका में ताज़ा फरसान और मिठाइयां बनाते हैं। हम न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में सोमवार से शनिवार तक डिलीवरी के साथ टिफिन सेवा भी प्रदान करते हैं। आज ही बॉम्बे एक्सप्रेस और वैष्णो केटरर्स को कॉल करें 7329866241 और विजिट 2849 वुडब्रिज एवेन्यू, एडिसन, न्यू जर्सी।
12: लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा,
13: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
14: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
15: It's 5:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
16: Ghana Indie Top 10.
17: Kanika ke saath on Mirchi.

0: कमीना।
1: दिलजीत दोसांझ, ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते? इस साल तो आंसर नहीं मिलने वाला है। उन्हीं की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन 13 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। गाने का नाम है डीलर। पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके डीलर इज दिस वीक का गाना नंबर 4।
2: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। हर हफ्ते वी रिसीव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिक्वेस्ट फॉर आवर फेवरेट सेगमेंट ऑफ द शो व्हिच इज कॉल्ड हमारी कसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज एंड द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज, एक सेकेंड, मैं थोड़ी ड्रामेटिक हो रही हूँ बिकॉज दिस हैज बीन द मोस्ट रिक्वेस्टेड कसेट क्लासिक ऑफ ऑल टाइम। मुझे इतना ऑनर फील होता है ना जब मैं वो गाने प्ले करती हूँ जिनको सुन के मैं बड़ी हुई हूँ। कैसेट क्लासिक ऑफ ऑल टाइम। मुझे इतना ऑनर फील होता है ना जब मैं वो गाने प्ले करती हूँ जिनको सुन के मैं बड़ी हुई हूँ। एंड आज का कैसेट क्लासिक

Oriya days. Saal tha 1998. Cable TV naya tha and Hindi film music was everything. Indian indie jaisa kuch aisa tha nahi. But kehte hai na, some people have got that crazy in them. Aise ek artist the Dr. Palash Sen. Actually doctor, orthopedic surgeon. Lucknow mein paida huye, Delhi mein pale bade. Unhone apna ek rock band banaya Hindi mein and that was Euphoria. Pehli album aayi called Dhoom. Logo ko bahut pasand aayi, logo ne dance kiya, full on celebration of music. फिर साल 2000 में आई उनकी दूसरी एल्बम कॉल्ड फिर धूम और उस एल्बम में था ये गाना मायरी. ये कुछ अलग था, कुछ अलग ही हो गया था. धीरे धीरे सबको इस बात का अंदाजा हो रहा था ये गाना कहीं कहीं में आपको एक स्पिरिचुअल स्पेस में ले जाता है, कहीं रोमांटिक स्पेस में, बट अंडरलाइंग इट्स अ हार्ट ब्रेक सॉन्ग. लेकिन वो अपने प्यार को चेरिश कर रहे हैं और उसको चेरिश करते हुए पलाश सेन इस गाने के थ्रू अपनी मदर को वो कहानी सुना रहे हैं. मायरी याद वो आयरी कि मुझे उसकी याद आ रही है जो अब मेरी लाइफ में नहीं है, विच इज सो क्यूट. अपनी रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए इससे पहले कि मैं यहाँ रोने लग जाऊँ इस गाने के बारे में बात करते हुए. द सॉन्ग विच इज मोर देन अ सॉन्ग, इट्स एन इमोशन, इट्स अ जर्नी बैक टू आवर चाइल्डहुड. अ लव सॉन्ग जो डॉक्टर पलाश सेन ने अपनी मदर के लिए लिखा. गाने का नाम है मायरी बाय द वन एंड ओनली यूफोरिया. इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

आई थिंक इस गाने के बाद कैसेट क्लासिक को हमें टाइम मशीन बुलाना चाहिए था, बिकॉज आई वॉज टेकन बैक टू द टाइम. गाना जब शुरू होता है वो चार स्ट्रिंग्स बजते हैं एंड आई एम टेकन टू दिस डिफरेंट वर्ल्ड जहाँ जिंदगी बहुत सिंपल है, दोस्त तुम्हारे करीब है एंड फीलिंग्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. पलाश सेन द जीनियस दैट यू आर.

0: Indie Top 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट। ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
8: ब्रॉट यू बाय दीप फूड्स। दीप फूड्स खाओ तो जानो। ब्रॉट यू बाय दीप फूड्स। दीप फूड्स खाओ तो जानो।
9: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स।

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: It's 6 p.m. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go!
4: Bollywood ke liye Friday hota hai unka Judgment Day. Har Friday, Bollywood ko ek nahi opportunity milti hai. Ek naya poster, ek naya trailer, ek naya gana, ek nahi kahani. लेकिन हर साल सिर्फ कुछ ही चीजें वक्त की कसौटी पर टिकती हैं, बाकी सब कंटेंट बनकर रह जाती हैं। और मुझे पिछले कुछ दिनों से एक सवाल बहुत परेशान कर रहा है। हमारे पास आज सब कुछ ज्यादा है, वी गॉट बिगर बजट्स, वी गॉट बिगर मार्केटिंग, वी गॉट बिगर प्लेटफॉर्म्स, और फिर भी क्या हम वैसे कल्चरल मोमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं जो 10-20-25 साल बाद भी याद रह जाएंगे, या हम सिर्फ अगले फ्राइडे तक सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के काउंटडाउन में इसी बात को थोड़ा और एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं। म्यूजिक भी होगा, मेमोरीज भी होंगी, और कुछ ऐसे सवाल होंगे जिनके जवाब शायद बॉलीवुड को खुद ढूंढने पड़ेंगे। हाय, मैं हूं सुरेन एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का डेफिनेटिव हिंदी म्यूजिक काउंटडाउन। एंड इस एपिसोड का पहला गाना है उस फिल्म से जिसे तारीफ तो मिल रही है पर बॉक्स ऑफिस की मोहर नहीं। मैं वापस आऊंगा बाय इम्तियाज अली, एंड गाना नंबर 20 पर है इश्क मस्ताना, विच रियूनाइट्स मोहित चौहान विद एआर रहमान एंड इरशाद कामिल फॉर एन इम्तियाज अली फिल्म। ये तो हमने पहले भी देखा है।
5: नंबर 20।

वेलकम टू द जंगल। और अगर आपने इसका ट्रेलर देखा है तो एक बात समझ आ गई होगी, आज की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे महंगी चीज पैसा नहीं है, अटेंशन है। हर प्लेटफॉर्म आपको बुला रहा है, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, शॉर्ट्स, रील्स, पॉडकास्ट, गेमिंग, सब आपके वक्त के लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता था कि फिल्म्स अब और बेहतर हो जाएंगी और हिम्मत वाली होंगी, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है। लेकिन अजीब बात यह है, कई बार लगता है कि इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। इस हफ्ते लगान के 25 साल पूरे हो गए हैं और उसने मुझे एक बात याद दिला दी। 2001 सिर्फ एक अच्छा साल नहीं था, 2001 एक स्टेटमेंट था। लगान तो आई थी, लेकिन उसी दिन उसके साथ आई एक और फिल्म।

एक फिल्म ने दुनिया को दिखाया कि हिंदुस्तानी कहानियां ऑस्कर तक पहुंच सकती हैं। एक फिल्म ने थिएटर्स में ऐसी भीड़ जमा की जो आज भी रिकॉर्ड बुक्स में जिंदा है। और एक फिल्म जिसने बॉलीवुड को ग्लोबल फैमिली इवेंट बना दिया। सोचिए, तीन फिल्में, तीन अलग अलग फिल्म मेकर्स, तीन अलग अलग ऑडियंसेस और तीन अलग अलग विजन्स, और तीनों एक ही साल में आई। अब सवाल यह है, जब 2001 में ये मुमकिन था तो 2026 में हम इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? हमारे पास ज्यादा टेक्नोलॉजी है, ज्यादा स्क्रीन्स हैं, ज्यादा मार्केटिंग है, ज्यादा डेटा है, लेकिन क्या हमारे पास उतनी ही कन्विक्शन है? क्योंकि क्लासिक्स बजट से नहीं बनते, क्लासिक्स तो बनते हैं जब फिल्म मेकर्स ट्रेंड फॉलो करना छोड़कर ट्रेंड क्रिएट करते हैं। और शायद इसी भाग दौड़ में कुछ फिल्में आती हैं और कुछ नोटिस हुए बिना निकल जाती हैं। ऐसी एक फिल्म है कंगना रनौत की भारत भाग्य विधाता। उसका एक गाना मिर्ची टॉप 20 में डेब्यू कर रहा है। इट्स अ फील गुड हैप्पी गो लकी सॉन्ग संग बाय श्रेया घोषाल। गाना नंबर 18 है नब्ज नब्ज। नंबर 18।

0: ट्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: इसका बना उसका बना सबका बना बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
2: हेलो
3: हेलो मिस्टर विपुल, मैं से बोल रहा हूँ। आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए, आपके मोबाइल का इनबॉक्स। तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे?
2: इनबॉक्स चाहिए? इनबॉक्स कैसा मतलब?
3: मैं आपको वही समझा रहा हूँ। एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है, तो सर्वर में जो डेटा होता है, अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना। तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा। अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे। तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ, आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ, ठीक है सर?
2: नहीं नहीं, बात तो सुनो भाई साहब।
3: हाँ बताइए।
2: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना।
3: वो हम खींच लेंगे, आप उसकी फिक्र मत करिए।
2: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे?
3: मैं कुछ भी करूं यार, आप ज्यादा बहस करते क्यों? एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं, आप मुझसे बहस कर रहे हैं।
2: बहस वाली बात नहीं है, मतलब मैं खुद मालूम तो करूं ना। अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
3: बिल्कुल,
2: से मुझे
3: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
2: जा कहां रहा है?
3: नहीं वो जा कहां रहा है, जा यहीं रहा है, आपकी कंपनी में जा रहा है। और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए। अब उसमें आपको टेंशन क्या है, हम आपके मैसेजेस रखेंगे, उसको पढ़ेंगे सही से।
2: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें, मैं ऐसे किस तरह से दे दूं उसको?
3: वैसे आप बुरा मत मानना, आपके मना करने से मुझे लग रहा है कि आपने उसमें सारे नॉन वेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें।
2: यार क्या बात कर रहा है, मतलब
3: नॉन वेज एसएमएस क्यों रखे हुए यार आपने उसमें? बेकार की बातें कर रहे हैं आप, कंपनी को जरूरत है। क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे? मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए, मेरी बात सुनिए।
2: चल
3: नहीं नहीं, आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है, रुकिए रुकिए। सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है, उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी, आपके बर्तन, आपके कपड़े तक उतरवा सकती है।
2: बिल्कुल
3: क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए आप पूरी। हेलो
2: हेलो
3: हेलो भाई साहब, आपने फोन काट दिया यार, इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं, फोन काट रहे हैं यार।
2: क्या
3: यार बात सुनिए आप मेरी। मैं आपसे सिर्फ एक बात, विपुल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए, मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा, तुम रेडियो मिर्ची पे हो।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स, किंगडम ऑफ ज्वेल्स वेयर ट्रेडिशन मीट्स स्टाइल।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: कुछ आवाजें होती हैं जो सीधा दिल तक पहुंचती हैं।
8: सतीश मलिक और अनीमा जौहरी प्राउडली प्रेजेंट एन एंचेंटिंग म्यूजिकल कॉन्सर्ट बाय क्लासिकली ट्रेन्ड डॉक्टर मीनल मडेगांवकर का एक टाइमलेस म्यूजिकल कॉन्सर्ट, जिनका साथ देंगे रिनाउंड तबला आर्टिस्ट अभय दातर और हारमोनियम उस्ताद निनाद जोशी।
7: और इस खास शाम में एक दिल को छू लेने वाला ट्रिब्यूट टू आशा भोसले।
9: अभी न जाओ छोड़ कर।
8: 28th June 3 PM at ITV Gold Auditorium, Oak Tree Road. Call Satish right now at 862-812-9111.
10: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
11: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
10: Renew?
11: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
10: What better way to celebrate than with something timeless?
11: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
12: Kisi zamane mein, maa haathon se ghisti, pyaar se kootti, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
13: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
14: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock, Atlantic City. Book at Ticketmaster and PsyUSAInc.com.
15: कुछ आवाजें सिर्फ गानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक।
16: मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।
17: तेरा क्या होगा कालिया?
18: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
17: अब मिर्ची खा।
19: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
20: नंबर 17।

यार कभी कभी कोई गाना सुनते वक्त एक अजीब सी डेजा वू वाली फीलिंग आ जाती है। मस्कारा के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। एआर रहमान, इरशाद कामिल, इम्तियाज अली, ये तीनों नाम जब साथ आते हैं तो एक्सपेक्टेशंस वैसे ही स्काई हाई हो जाते हैं। और फिर जब मैंने ये गाना मस्कारा दोबारा सुना, मेरे दिमाग में एक और गाना अपने आप लूप पे चलने लगा। पता नहीं आपको भी लगता है कि नहीं, लेकिन दोनों गानों में एक ही तरह की शरारत है, एक ही तरह की बेपरवाही, जैसे सुर सीधा चलने से इनकार कर रहे हो। लेकिन फिर ये चार्ट्स आपको याद दिला देते हैं कि म्यूजिक की दुनिया में रूल्स नाम की कोई चीज ही नहीं होती। इस हफ्ते नंबर 15 पर है धुरंधर का मैं और तू, जैस्मिन सानलास का एटीट्यूड, वो रैप वाली एनर्जी और एक ऐसा सोनिक पंच जो किसी और गाने जैसा बिल्कुल नहीं लगता। नंबर 15

एंड देन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि मिर्ची टॉप 20 में इस हफ्ते डेब्यू कर रहा है एक ऐसा गाना जो हिंदी फिल्म काउंटडाउन में सुनने की शायद किसी ने उम्मीद तक नहीं की होगी, क्योंकि भोजपुरी फ्लेवर है भैया, देसी स्वैगर है, और सबसे बड़ी बात एक भी डबल मीनिंग वाली लाइन नहीं है, सिर्फ मस्ती है, सिर्फ रिदम है और एक हुक है जो दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं लेता। कैसे बनी हाय दैया, कैसे बनी फलौरी बिना चटनी, कैसे बनी धमाल 4 का ये गाना। एंड यस, इस फ्रेंचाइज का ये चौथा पार्ट है। वेल इट्स गॉट नील कमल सिंह, ममता शर्मा सिंह दिस सॉन्ग, मिर्ची टॉप 20 में डेब्यू करते हुए नंबर 14 पर, फलौरी बिना चटनी कैसे बनी। नंबर

0: बॉस आसन। इसमें आपको बॉस के हर काम को हाँ करने के लिए अपनी गर्दन और मुंह ऊपर नीचे करनी होती है। ट्राई करो, ऊपर नीचे, वेरी गुड। इस यस बॉस आसन से आपकी चापलूसी करने की क्षमता बनी रहती है, और ये आसन करने से मसल ग्रोथ तो अच्छी होती है और करियर ग्रोथ भी टनाटन हो जाती है।
1: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
2: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: क्या आप हेल्थ केयर हासिल करने को लेकर परेशान हैं? क्या आपको पता है कि न्यूयॉर्क लोग परिवारों और छोटे बिजनेसेस के लिए कम दाम में हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान करता है? एप्लीकेशन की चिंता ना कीजिए, SACSS एनरोलमेंट स्पेशलिस्ट्स आपको पूरी प्रक्रिया में मदद करेंगे। हमारे स्टाफ मेंबर्स 20 से अधिक भाषाएं बोलते हैं और आपको सस्ती हेल्थ केयर दिलाने में मदद करेंगे। साउथ एशियन काउंसिल फॉर सोशल सर्विसेज को कॉल करें 718-321-7929 या SACSS ऑफिस विजिट करें 143-02-45th Ave, फ्लशिंग, न्यूयॉर्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट www.sacssny.org.
6: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
9: અમેરિકામાં શ્રેષ્ઠ ઇન્ડોર અને આઉટડોર કેટરિંગ સેવા, એન્ગેજમેન્ટ, લગ્ન, બેબી શાવર, જન્મદિવસ પાર્ટી અને એડલ્ટ ડે કેર, તમારા સ્થળ પર લાઇવ કુકિંગની સુવિધા. અમે અમેરિકામાં તાજું ફરસાન અને મીઠાઈ બનાવીએ છીએ. અમે ન્યૂ જર્સી અને ન્યૂયોર્કમાં ડિલિવરી સાથે ટિફિન સેવા પણ આપીએ છીએ. આજે જ બોમ્બે એક્સપ્રેસ અને વૈષ્ણવ કેટરર્સને કોલ કરો એટ 732-986-6241 ઓર વિઝિટ 2849 વુડબ્રિજ એવન્યુ, એડિસન, ન્યૂ જર્સી.
10: Finest kitchens in India. A thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
7: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
9: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin. It's 6:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
11: Only on Mirchi. It's hot.
12: Number 13.
13: Achha!

कभी कभी लगता है कि बॉलीवुड की सबसे बड़ी समस्या फेलियर नहीं है, कामयाबी है, सक्सेस। क्योंकि जब कोई फॉर्मूला काम कर जाता है ना, हम उसे सेलिब्रेट कम करते हैं, रिपीट ज्यादा करते हैं। शायद वरुण धवन की कहानी थोड़ी ऐसी ही है। अ डेब्यू विच वॉज एज स्मैशिंग एज स्टूडेंट ऑफ द ईयर, एंड देन उसके बाद मैं तेरा हीरो, हम टी शर्मा की दुल्हनिया, जुड़वा 2, एक के बाद एक हिट्स। लेकिन फिर एक वक्त आया जब ऑडियंस बदल गई। I think it was around 2017 or maybe 2018. सब बदल गया, मगर फॉर्मूला वही रह गया। मुझे बात हमेशा इंट्रीगिंग लगती है। वरुण धवन को एक्टर किन फिल्मों ने साबित किया? एक सुजीत सरकार की अक्टूबर थी, एंड मोर इम्पोर्टेंटली दूसरी फिल्म थी ये।

मतलब जिस एक्टर को हम सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं वो अपने ही बनाए हुए कंफर्ट जोन से बाहर मिलता है। हर स्टार के करियर में एक मोड़ आता है जहां सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि आप हिट दे सकते हैं कि नहीं, सवाल ये होता है कि आप खुद को सरप्राइज कर सकते हैं कि नहीं। और शायद इसलिए मुझे अगला गाना बेहद पसंद है, क्योंकि हर अच्छी चीज तुरंत पॉपुलर नहीं होती, कभी कभी उसे वक्त देना होता है, कभी कभी उसे लोग बाद में डिस्कवर करते हैं। बिल्कुल मैं वापस आऊंगा की तरह फिल्म को उतना प्यार नहीं मिल रहा जितना उसे मिलना चाहिए, लेकिन जिन्होंने देखी है वो उसे छोड़ नहीं पा रहे। नंबर 12 पे दिस इज वो नहीं एन ए आर आर एंड इरशाद कामिल कोलैब। नंबर 12।

ये गाना मुझे किसी प्लेलिस्ट ने नहीं दिया, किसी एल्गोरिथम ने रेकमेंड तक नहीं किया। मैं जब धुरंधर देख रहा था, ये गाना अचानक मेरी जिंदगी में आ गया एंड तब से मुझे एक बात बहुत बार रियलाइज हुई है, शायद प्रॉब्लम ये नहीं है कि टेलीविजन इज डेड, प्रॉब्लम ये है कि सरप्राइज एलिमेंट मर गया है। एक जमाना था जब हम चैनल्स फ्लिप करते रहते थे, 9XM, MTV, Zoom, B4U Music, और बीच में अचानक कोई गाना आ जाता था। आप उसे ढूंढ नहीं रहे होते थे, वो आपको ढूंढ लेता था। कभी कभी तो उस गाने का नाम तक नहीं पता होता था, लेकिन अगले दिन वो गाना दिमाग में घर बना चुका होता था। आज हमारे पास पहले से ज्यादा म्यूजिक है, वी गॉट इन्फिनिट प्लेलिस्ट, इन्फिनिट रिकमेंडेशंस, इन्फिनिट कॉन्टेंट, लेकिन शायद कम डिस्कवरीज हो रही हैं, क्योंकि आज हर प्लेटफॉर्म आपको वही दिखाता है जो उसे लगता है कि आपको पसंद आएगा, और इसी चक्कर में वो चीज जो आपको पसंद आ सकती थी कभी मिलती ही नहीं। पहले हम गाने ढूंढते नहीं थे, गाने हमें ढूंढ लेते थे, शायद इसलिए कुछ गाने वक्त से बाहर निकल जाते हैं। उन्हें ट्रेंड्स की जरूरत नहीं पड़ती, एल्गोरिथम्स की जरूरत नहीं पड़ती, वो बस दिल तक पहुंच ही जाते हैं। मिथुन द कंपोजर कहते हैं कि उनकी पूरी डिस्कोग्राफी में अगर एक गाना है जो उनके दिल के बेहद करीब है तो वो यही है। रुकुमार राठौड़ जी की आवाज में एक ऐसा गाना जो हर दौर में

0: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है.
8: पहले भी मैं तुमसे मिला.
9: Singing world का सैयारा, none other than Vishal Mishra.
10: Vishal Mishra.
7: JT of Sai USA Inc. presents A Night Larger Than Life, Vishal Mishra's Pagalpan Tour. Friday, June 26th, Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City. Book your tickets at Ticketmaster.com
11: and SaiUSAInc.com.
12: This hour is brought to you by Raj Jewels.

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

सर्टिफाइड बैंगर बॉस, वल्ला वल्ला वल्ला। और मुझे लगता है कि कॉकटेल 2 क्वाइटली इस साल की सबसे एक्साइटिंग साउंडट्रैक्स में से एक बन रही है। पहले आया जब तलक, देन यू हैव द सॉफ्ट तुझको, एंड फिर आया माशूका, और अब आ गया वल्ला। चार गाने, चार अलग अलग मूड्स, लेकिन एक ही बात कॉमन, पर्सनैलिटी। नाउ हार्डी संधु इस गाने में गाते कम हैं, स्टाइल ज्यादा छोड़कर जाते हैं, और प्रीतम दा ने जो ग्रूव बनाई है वो सीधा स्पीकर से निकलकर हमारे खून में घुस जाती है। ये उन गानों में से है दैट यू कैरी विद योरसेल्फ। लेकिन गाने और फिल्मों में एक फर्क होता है। एक फिल्म का साउंडट्रैक आप इंस्टिंक्ट से बना सकते हो, लेकिन फिल्म स्क्रिप्ट से जीतती है या फिर हारती है। और इसलिए मुझे शाहिद कपूर की कही एक बात बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। शाहिद ने हाल ही में कहा कि अब वो स्क्रिप्ट्स सिर्फ अपनी गट फीलिंग पर, अपने सिक्स सेंस पर डिसाइड नहीं कर रहे। नरेशन के वक्त तीन और लोग उनके साथ रूम में बैठे होते हैं, यानी कि तीन और ओपिनियंस, तीन और पर्सपेक्टिव्स। और शायद ही कमजोरी नहीं है, शायद इसे ही मैच्योरिटी कहते हैं। क्योंकि सबसे इंटेलिजेंट लोग वो नहीं होते जो हमेशा अपनी बात लोगों से मनवाते हैं या खुद मानते हैं। सबसे इंटेलिजेंट लोग वो होते हैं जो समझ जाते हैं कि यार दुनिया बदल रही है, और बॉलीवुड की ऑडियंस वो तो हर रोज बदल रही है। इसी सवाल से वरुण धवन भी जूझ रहे हैं। डेविड धवन और वरुण धवन की जोड़ी को ऑडियंस ने कभी सर आंखों पर बिठाया था, लेकिन क्या वो फॉर्मूला आज भी उतना ही काम करता है? बॉक्स ऑफिस के नंबर्स और चार्ट्स दोनों फिलहाल सवाल पूछ रहे हैं। नंबर 6 से फिसलकर नंबर 9 पर आ गया है ये गाना, व्याह करवा दो जी, फ्रॉम द साउंडट्रैक ऑफ है जवानी तो इश्क होना है। नंबर 9।

मुझे ऑनेस्टली इस गाने के चार्ट्स पर ऊपर चढ़ने से बिल्कुल हैरानी नहीं होती, क्योंकि कुछ फॉर्मूलास कभी पुराने नहीं होते। वन कैची हुक, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा सा स्वैगर और पब्लिक का कनेक्शन तुरंत बन जाता है। दैट इज ऊंचा लंबा कद फॉर यू। लेकिन 2026 के पहले 6 महीनों ने सच से मुलाकात करवा दी थी हम सबकी। अरिजीत सिंह ने साल की शुरुआत में ही अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी, ये सबको याद है। लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जाने से पहले पूरा साल अपने नाम लिख कर जाऊंगा। सबसे पहले ही गेव अस दिस एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर। नंबर 7।

एक ऐसा गाना जो आज भी चार्ट्स की धड़कन बना हुआ है, इस हफ्ते नंबर 7 पर है। एंड देन आई एक फिल्म कॉल्ड 21, जिसमें अरिजीत गेवास सितारे।

0: फिर से, और ये सब रिटायरमेंट अनाउंस करने के बाद। अजीब बात है ना, कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद धीरे धीरे नजरों से ओझल हो जाते हैं। अरिजीत सिंह रिटायरमेंट के बाद और ज्यादा नजर आने लगे हैं, शायद इसलिए क्योंकि कुछ आवाजें सिर्फ सिंगर्स की नहीं रहती, वो एक जनरेशन की आवाज बन जाती हैं। तो अगर ये अरिजीत सिंह का फेयरवेल लैप है तो बॉलीवुड ने इससे खूबसूरत फेयरवेल शायद ही कभी देखा होगा। अब देखना यह है कि क्या उनका अगला मास्टरपीस नंबर वन की रेस में और तेजी से दौड़ सकता है, स्लोली एंड स्टेडिली, दिल जीतते हुए। This one is from Cocktail 2. It's the biggest love anthem of this summer. Gana number 6 hai Tujhko with Arijit Singh and Sunidhi Chauhan.
1: Number 6.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो
2: मैडम गुड इवनिंग
1: हाय
2: बैंक से बोल रहे हो ना हमारी नई स्कीम आई है मैडम ताजी स्कीम है बढ़िया स्कीम है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम
1: सब्जी बेच रहे हैं या लोन के
2: पहले सब पहले सब्जी बेचता था
1: अगर अगली बार फोन आ गए ना
2: मैडम तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत बात कर दो
1: हेलो
2: मैडम अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा
1: वे वहीं आके ऐसा तेरे बैठ मारूंगी ना
3: प्रीति मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए अपने ऊपर पड़ जाती है यार आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं आपका मुर्गा बन गया
2: मेरा आपका तो मुर्गा बन गया है
3: प्रीति ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं एक बार दिल्ली को सुना दूं
1: नहीं
3: से सॉरी
1: सॉरी ना मैं सॉरी
3: प्यार से बोल दीजिए कोकड़ो को
1: कुकड़ू
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Inefficient.
8: Very complex.
9: Clumsy or
10: confusion ही confusion.
5: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक. Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
11: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
12: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
13: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
14: I am not going to bed with you ever again.
13: But why? What did I do?
14: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
13: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
14: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
13: Yes, yes, yes, come soon. Honey!
14: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
13: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
15: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
16: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock, Atlantic City. Book at Ticketmaster and PsyUSAInc.com.
17: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
18: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
17: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
19: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
17: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
20: एक ही होता है।
17: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट
21: मिर्ची।
8: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 5।

0: अजीब बात है ना, कुछ गाने हिट होते हैं, कुछ सुपर हिट होते हैं और कुछ एवरग्रीन हो जाते हैं, और फिर बहुत ही कम गाने होते हैं जो लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। इस हफ्ते सोशल मीडिया पर लगान ही लगान थी। 25 साल, इंटरव्यू, स्टोरी, स्क्रीनिंग्स, और हम सब फिर से उस दुनिया में लौट गए जहां एक छोटा सा गांव पूरी हुकूमत को चैलेंज कर रहा था। लेकिन जब भी लगान की बात होती है तो मेरा दिमाग फिल्म पर नहीं जाता, मेरा दिमाग स्टेडियम पर जाता है, क्योंकि मेरी जिंदगी का काफी वक्त क्रिकेट ग्राउंड्स में गुजरता है। और मैंने एक चीज हर बार महसूस की है, जब मैच बड़ा हो, जब प्रेशर ज्यादा हो, जब लगता हो कि अब दिल सीधा गले में आ जाएगा, तो भीड़ में कहीं ना कहीं से एक आवाज उठती है, कोई हमसे जीत ना पावे चले चलो, और अचानक हजारों लोग एक हो जाते हैं। और सोचिए, ये गाना 25 साल पुराना है, इट्स 25 इयर्स ओल्ड, फिर भी पुराना नहीं लगता। यू मस्ट बी थिंकिंग, आखिर ऐसा क्यों होता है? शायद इसलिए क्योंकि ये जीत के बारे में नहीं है, ये हिम्मत के बारे में है, ये उस पल के बारे में है जब दुनिया कहती है कि यार नहीं होगा, लेकिन आप कहते हैं एक बार और कोशिश करके देखते हैं। थैंक गॉड कि जावेद साहब ने आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर के एक सजेशन को खारिज कर दिया।
1: द ट्यून वाज इस ट्यून में आपको जो लिखना लिखे नशा नशा नहीं रहेगा,
2: नशा नशा चेंज नहीं होगा।
3: हम लोग सब नशे में आ गए थे।
4: किसान बारिश हो नहीं रही है, किसान भूखे मर रहे हैं, उन पे 3 बरस का लगान चढ़ा हुआ है, और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मुझसे कह रहे हैं लिखो नशा नशा नशा नशा। भाई ये कैसे हो सकता है?
5: चले चलो, मैंने लिखा। अरे नहीं, वो देखिए नशा नशा में क्या फ्लो था, मैं थोड़े दिनों तक ये गाइए इसमें भी फ्लो आ जाएगा।
0: और बस नशा नशा चला गया, जादू रह गया। 25 साल बाद भी हर स्टेडियम में, हर जनरेशन के साथ, हर नए सपने के साथ, लगान से चले चलो। Top 20 Rewind.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची योगा क्लास मिर्ची योगा क्लास। अच्छा ये आसन है खर्चा आसन। इसमें बीवी की हर मांग पूरी करने के लिए अपने हाथ और जेब में सामंजस्य बैठाना है। पहले दाया हाथ उठाओ और उसे जेब में डालो, एटीएम कार्ड बाहर निकालो। इस क्रिया को 2-3 बार दोहराओ। ये करने से आपको कमरे के बाहर सोफे पे नहीं लेटना पड़ेगा और खाने में ताने भी नहीं मिलेंगे।
2: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
3: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
7: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
5: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
10: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
11: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
12: पहले भी मैं तुमसे मिला।
13: सिंगिंग वर्ल्ड का सैयारा, नॉन अदर देन विशाल मिश्रा।
14: विशाल मिश्रा,
11: Jetty of Sai USA Inc. presents A Night Larger Than Life, Vishal Mishra's Pagalpan Tour, Friday, June 26th, Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City. Book your tickets at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
15: Oh no!
16: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
17: आवर एनिवर्सरी इज कमिंग अप, शैल वी रिन्यू आवर वाउज?
18: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
17: Renew?
18: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
17: What better way to celebrate than with something timeless?
18: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
19: तेरा क्या होगा कालिया?
20: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
19: अब मिर्ची खा।
21: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: नंबर 3।
22: वाह,

कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनके आते ही समझ आ जाता है कि उनका हिट होना तय था। 3 हफ्ते पहले चार्ट्स पर एंट्री की माशुका ने और आज इट शॉट अप स्ट्रेट नंबर 2। माशुका इस वक्त वही कर रहा है जो हर बड़े समर एंथम को करना चाहिए, गाड़ियों में बज रहा है, रील्स पर चल रहा है और लोगों के दिमाग में बिना परमिशन के घुस चुका है। लेकिन मुझे राघव चैतन्य की एक और बात बहुत पसंद है, वो सिर्फ गाना गाता नहीं है, वो गाना आपके अंदर उतार भी सकता है और गाने को भी उतार सकता है, वो भी उसके पूरे मेकअप के बिना। द कॉकटेल 2 की कहानी इज सेट इन इटली और अगर आप कभी इटली गए हैं तो आपने वो मंजर जरूर देखा होगा या एटलीस्ट यूट्यूब पर देखा होगा। एक सिंगर, एक गिटार और पूरी भीड़ चुपचाप उस बंदे को सुन रही होती है। इट्स ए टिपिकल इटालियन सेटिंग और राघव ने माशुका का एक ऐसा ही स्ट्रिप डाउन वर्जन बनाया है। ना बीट्स हैं, ना प्रोडक्शन है, ना इलेक्ट्रॉनिक लेयर्स हैं, है तो सिर्फ राघव की आवाज एंड द फील्स।

यही तो असली टेस्ट होता है, जब गाने से सब कुछ निकाल दो और फिर भी गाना बचा रहे। लेकिन मिर्ची रॉ 20 का क्राउन अभी भी किसी और के पास है। पिछले लगभग 5 महीनों से हर चैलेंजर को रोक कर, हर नई एंट्री को देख कर, बस मुस्कुराते हुए ये गाना टिका हुआ है नंबर 1 पर। फिर से इट्स जैस्मिन सैंडलर्स एंड मधुबंती बागची, दिस इज शरारत, एंड अब हो गए इसे पूरे 18 हफ्ते नंबर 1।

0: बस इसी के साथ मिर्ची टॉप 20 के इस एपिसोड को यहीं पॉज करते हैं। वेल, नए गाने आएंगे, नए ट्रेंड्स भी आएंगे और नए स्टार्स भी आएंगे, लेकिन अगले एपिसोड पर मिलकर देखेंगे इनमें से कितनी चीजें बाकी टिकती हैं। तब तक के लिए म्यूजिक लाउड रखिए, ओपिनियंस अपने रखिए। अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज सुरेन, ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: It's 7:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels, diamond jewelry ki first choice. RK Jewels, best quality, best price.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन। Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
3: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin. Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and SaiUSAInc.com. This hour is brought to you by Raj Jewels.